हर घड़ी मेरा प्यार का साया चलेगा तेरा साथ सजना। अरे फिल्म प्यार का साया, सुंदर कुमार सानू एंड नाइटिंगेल आशा भोसले जी।

चाह है तुम्हें चाहेंगे सांसों में बस जाएंगे फ्रॉम द मूवी जीना मरना तेरे संग खजौंद कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल We gaan verder met de volgende song, met de volgende classic hit. Ditmaal uit de movie Salami. Once again, Kumar Sanu met Chehera Kya Dekhte Ho.

हो गया है तुझको तो प्यार सजना। सुपर डुपर डुएट सॉन्ग द मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी एंड उदित नारायण फ्रॉम द ब्लॉकबस्टर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। We gaan verder met de volgende classic hitsong. Ditmaal The Tiger of Bollywood, Kumar Sanu met Dil Mein Sanam Ki Suret.

दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूं अपन, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई हमको, इस घर में जानता है कोई।

अदी सुंदर सा गजल आज की मंगलवार के सुबह के कार्यक्रम में हमने पेश किए, और आज जबकि मंगलवार है तो आज की सुबह में कुछ गजलें मैंने चुन कर रखे हुए हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की मीठी आवाज में। यही आशा करते हैं कि अब से लेकर 5 बजे तक कुछ अच्छी अच्छी गजल हम पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे आप सभी के नाम, और यही आशा करते हैं सुनकर आप सब पसंद किए। बस यही हमारा कोशिश है। सुनल की सेवा में हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, खुद मोरखन। मैं हूं आपका सेवक विजय सरफी, और आज जबकि मंगलवार है तो एक बार फिर हम आ चुके हैं अमर एफएम के स्टूडियो में आप सबको सेवा करने के लिए। हर रोज की तरह आज भी करीबन 4 से 5 कुछ गजलें होगा, और 5 से 6 बजे तक कुछ भजन के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम आगे जारी करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला गजल की ओर आज की मंगलवार की सुबह में। मिलकर सुने, गुने और गुनगुनाइए।

आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे

उठ गई इस दिल में उनको दफनाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनके टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। इन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कर्ज चुकाना बाकी है।

प्रोग्राम हम और आगे जारी करते हैं, जबकि सुबह के प्रोग्राम से आप सब जुड़े हुए हैं और आप सबका मन चाह रेडियो स्टेशन पे आप सब चुन किए हुए हैं और एक से एक अच्छी अच्छी गजलें मैंने चुन कर रखे हुए है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की मीठी आवाज में। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला गजल की ओर। आज की सुबह में हम पेश करते हैं आप सभी गजल संगीत प्रेमियों के नाम अमर एफएम के जरिए।

मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंभे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं, आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?

एक से एक अच्छी अच्छी गजलें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की आवाज में हम पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं आप सभी के नाम। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आपको लेकर कुछ और गजलें हैं जो मैंने चुनकर रखे हुए आज के प्रोग्राम में, और देखते हैं तभी वक्त है मेरे पास। तो मेरे ख्याल से दो तीन गजलें और होगा, उसके बाद में हम प्रोग्राम और आगे जारी करेंगे कुछ भजन के साथ। लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त है मेरे पास, तो अगला गजल आप सभी के नाम पेश होते हैं।

अति सुंदर विष्णु जी के मंत्र आप सभी के नाम हमने पेश किए और यही प्रार्थना की जा रही है। जितने ही लोग विष्णु भगवान के प्रार्थना में लगे हुए हैं, बस प्रार्थना ही, विष्णु भगवान के कृपा दृष्टि सदैव आप सब पर बने रहे। चलिए प्रोग्राम हम और आगे जारी करते हैं। यहाँ से हनुमान जी के भजन आप सभी के नाम प्रस्तुत होते हैं आज की मंगलवार के सुबह के कार्यक्रम में।

जबकि भजन प्रोग्राम आप सभी के नाम पेश होते हैं करीबन 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आज मंगलवार है तो खास हनुमान जी के भजन मिल करके हम लोगों ने सुने। और चलिए यहाँ से एक सुंदर सा माता जी के भजन पेश होते हैं।

सुंदर सा माता जी के भजन मिल करके हम लोगों ने सुने आज की मंगलवार के सुबह के कार्यक्रम में। यही आशा करते हैं हम कि हमारा हिस्सा का प्रोग्राम जो हमने पेश किए करीबन 4 बजे से लेकर अब तक सुनकर आप सब पसंद किए। बाकी के जो प्रोग्राम है सुनते जाना। अभी चंद घड़ी के अंदर में हम शुरुआत करेंगे भजन यात्रा कार्यक्रम के साथ। हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम आगे जारी करेंगे, बस इंतजार करना। थोड़ी देर के बाद हम शुरुआत करने को जा रहे हैं भजन यात्रा कार्यक्रम।

एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को हम कहते हैं खुदमोरखा वेलकम तुरख। आज अब की है दिनसदा 5 मई 2026। सुबह के कार्यक्रम आप सब सुन रहे हैं और चलिए यहाँ से भजन यात्रा कार्यक्रम की ओर हम आप सबको लेके चलते हैं। और हर रोज की तरह आज भी शुरुआत करते हैं एक माता भजन के साथ। और भजन प्रस्तुत किया जा रहा है देन हाग से मंदिर सेवा धाम की ओर से। आप सभी के नाम ये माता जी के भजन मिल करके सुनते हैं। साथ साथ प्रार्थना है माँ की कृपा आप सभी सुनाल को प्राप्त हो। ये माता जी के भजन मिल करके सुनते हैं आज की सुबह के कार्यक्रम में।

अति सुंदर सा भजन पेश हुआ है देनहाग से मंदिर सेवा धाम की ओर से आप सभी भक्त प्राण के नाम हमने पेश किया देनहाग से श्री राम मंदिर और साथ में सोनार खाउस सर्फस की ओर से। आज की सुबह के प्रोग्राम में ये सुंदर सा भजन पेश होते हैं। साथ ही साथ मंगलमय दिन आप हर एक को हो ये राधा कृष्ण भजन मिल करके सुनते हैं।

अति सुंदर भजन राधा कृष्ण भजन मिलकर के हम लोगों ने सुने देनहा से श्री राम मंदिर और साथ में सुनार हाउस सर्विस की ओर से आप सभी के नाम हमने पेश किया। चलते हैं बढ़ते हैं आप सबको लेकर अगला भजन की ओर और अब की बार भजन पेश होते हैं रोतदम सीकाद 99 से अवदरिया धाम टेम्पल की ओर से आज की मंगलवार की सुबह में ये सुंदर सा कृष्ण जी के भजन मिल करके सुनते हैं। साथ ही साथ आज का ये दिन आप सभी के लिए शुभ हो, ये भजन पेश होते हैं।

अति सुंदर कृष्ण जी के भजन पेश हुआ है रोतदाम सी काद 99 सही से औदरिय धाम टेंपल के ओर से आप सभी के नाम हमने पेश किए। फलारदिंग से श्री नंदा देवी मंदिर आनंद जी महाराज जी की तरफ से ये माता जी के भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ साथ प्रार्थना है माँ की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बने रहे, ये माता जी के भजन मिलकर के सुनते हैं।

अति सुंदर माता जी के भजन पेश हुआ फ्लारदिंग से श्री नंदा देवी मंदिर आनंद जी महाराज जी की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किए दनहा से देव मंदिर हेदबस्तूर और साथ में अल फ्रेवेलखर्स की तरफ से आज की मंगलवार की सुबह में यह हनुमान जी के भजन मिल करके सुनते हैं। साथ साथ प्रार्थना है हनुमान जी की कृपा दृष्टि सदैव आप सब पर बने रहे ये भजन मिलकर के सुनते हैं।

सुंदर सा भजन पेश वह दनहाक से देव मंदिर रहत बस्तियर और साथ में अला फ्रेवेला खर्च की तरफ से आप सभी के नाम हमने पेश किए। अब की बार भजन लाया जा रहा है संस्था सत्य धर्म हौफलित से और साथ में संस्था अपना, साथ में सभी जुड़े हुए संगठन जो है ये सुंदर सा हनुमान जी की आरती मिल करके सुनते हैं। साथ साथ संस्था अपना सभी संगठन को साथ में लेकर के आप सभी को मंगलमय कामना प्रस्तुत करते हुए ये भजन पेश होते हैं।

सुंदर सा हनुमान जी की आरती मिलकर के हम लोगों ने सुने, प्रस्तुत की गई है संस्था सत्य धर्म हाउफ्लिट से और साथ साथ संस्था अपना और साथ में सभी जुड़े हुए संगठन जो है आज की सुबह के कार्यक्रम में पेश हुआ है आप सभी के नाम। चलिए बढ़ते हैं आप सबको लेकर अब की बार एक सुंदर सा भजन और प्रस्तुत होते हैं देन हाग से संध्या रायसन का मालिक डायरेक्टर जो है श्रीमान बॉय को सुखाए और साथ साथ देन हाग से परिवार देव मंगल की ओर से आज की मंगलवार की सुबह में ये सुंदर सा प्यारा सा हनुमान जी के भजन मिलकर के सुनते हैं। साथ साथ प्रभु की कृपा आप सब पर हो ये भजन मिलकर के सुनते हैं।

देन हाग से संध्या रेशन का मालिक डायरेक्टर जो है श्रीमान बॉयको सुखाए और साथ साथ देन हाग से परिवार देव मंगल की ओर से आप सभी के नाम हमने पेश किए है ये सुंदर सा प्यारा सा हनुमान जी के भजन आज की मंगलवार के सुबह के कार्यक्रम में। अब की बार मिलकर के सुनते हैं एक सरस्वती माता भजन, प्रस्तुत होते हैं नाम शोन स्टिफ्टिंग हिंदू अंडरवाइज नीदरलैंड एंड द फाइव आंखस्लोटन स्कूलन, आमस्टरडाम से श्री लक्ष्मी स्कूल, अल्मेरा से श्री गणेश स्कूल, उत्तराख से श्री कृष्ण स्कूल, देन हाग से श्री विष्णु स्कूल और रोटरडाम से श्री सरस्वती स्कूल की ओर से ये सुंदर सा सरस्वती माता भजन मिल करके सुनते हैं। साथ साथ आप लोगों के इष्ट देव आप सब पर कृपा बनाए रहे, ये भजन पेश होते हैं।

मेरे विचारों को पवित्र बनाओ, मेरी वाणी में मधुरता भर दो माँ, मेरे मन के हर अंधकार को ज्ञान के दीप से आलोकित कर दो माँ। मेरे छोटे हाथों से जो भी लिखूं, उसमें आपका आशीष बस जाए, मेरे हर प्रश्न का उत्तर आप बनो, मेरी हर भूल

अति सुंदर सरस्वती माता भजन मिलकर के हम लोगों ने सुने आज की सुबह में, प्रस्तुत की गई है नामशोन सिक्टिंग हिंदी अंडरवाइज नेदरलैंड एंड द फाइव आन स्लोटन स्कूलन, अम्सरडाम से श्री लक्ष्मी स्कूल, अलमेरा से श्री गणेश स्कूल, उत्तराख से श्री कृष्ण स्कूल, डेन हाग से श्री विष्णु स्कूल और रोटरडाम से श्री सरस्वती स्कूल की ओर से आप सभी के नाम हमने पेश किया। सुनो लो, आज अब की है मानदाह नहीं डेंसदाह, आज है डेंसदाह 5 मई 2026। तो सुबह के कार्यक्रम हमने पेश किए करीबन 4 बजे से लेकर अब तक। ये आशा करते हैं कि हमारा हिस्सा का प्रोग्राम जितने ही देर तक हमने पेश किया आज की सुबह में सुनकर आप सब पसंद किए। बाकी के जो प्रोग्राम हैं सुनते जाना। हमारा कुलेखा जो है सेविका मफरा बेया अवतार जी प्रोग्राम टेक ओवर करने वाली है रिक्लाम के बाद में। आज के लिए, सुनने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा मोरखन एन इस तत मोरखन एम फोस्ट्रक्स फेलर से प्लसर में कुलेखा सेविका मफरा बेया अवतार जी। बाय बाय, स्वाई स्वाई, खुदा मोरखन एंड तत मोरखन।

मुसीबत का किए जा सामना कांटों पे चलता जा, मुसीबत का किए जा सामना कांटों पे चलता जा, अगर मंजिल को जाना है तो गिर गिर के संभलता जा। सुनने वालों की सेवा में सादर प्रणाम आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ बेया। आज मंगलवार मई की 5 तारीख साल 2026 के रेडियो अमोर के कार्यक्रम में आप सभी को अभिनंदन करती हूँ, आपको इस्तकबाल करती हूँ। शुभ दिन के लिए प्रार्थना हम करते हैं आप सभी सुनने वालों के वास्ते, आप सभी के मनोकामना पूरी हो। जो बीमार है, लाचार है, उनके तंदुरुस्ती सेहत के लिए बस प्रार्थना दुआ की जा रही है। परिवार में कहीं पर दुख है, कहीं पर गमी है, तो सहन शक्ति के लिए, ताकत के लिए हम प्रार्थना करते हैं।

U allen een succesvolle, spirituele, liefdevolle, gezegende dag toegewenst. Voor de zieken en hulpbehoevenden, zoals altijd, wordt er vandaag ook gebeden voor hun welvaart en beterschap. Zit u in een rouwperiode, dan wensen wij u heel veel sterkte toe. मुझसे पहले कोलेगा विजय और सरफी जी आपको सेवा किया और यहाँ से मैं उपस्थित हुई हूँ अपने हिस्से का भजन कार्यक्रम को लेकर. En beste luisteraars, herdenken betekent ook je lessen leren en deze belangrijk blijven vinden. Daarmee geef je betekenis aan nooit meer. अर्थ ये है सुनने वालों की अगर कोई गलती आप किए है तो भूलना तो चाहिए फिर भी कभी कभी उसे याद भी करना चाहिए क्यों करके वही भूल से हम अच्छे सीख को पाए हैं और वही सीख के सहारे हमें अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है. जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है जहाँ तक अमोर एफएम का प्रोग्राम सुनाई देता है मेरा प्यार आप सब तक पहुँचे. तो आइए सुनने वालों पहला भजन मेरे हिस्से का प्रोग्राम में जो है ये है विशेष करके सैफ बेफे का परिवार भारत सिंह जी के तरफ से सभी सुनने वालों के लिए.

ओम जय जगदीश हरे पेशवा है। सुनने वालों, आज की शुभ के प्रोग्राम में सेफ बेफे का परिवार भारत सिंह जी के तरफ से सभी सुनने वालों के नाम आज मंगलवार की शुभ के प्रोग्राम में एस बेफे इलेक्ट्रो टेक्निका श्रीमान और श्रीमती पेम एंड योलंदा कुंज बिहारी अपने चार बच्चों के साथ है, रिकार्डो, मिशेल, जोवी और डेमियन के तरफ से हर एक सुनने वालों के नाम है। भर दे रे शाम झोली भर दे,

तेरे हाथ हाथों में एसबेफेटे इलेक्ट्रो टेक्निक का श्रीमान और श्रीमती प्रेम एंड योलंदा कुंज बिहारी जो है, साथ में रिकार्डो मिशेल जोवी और डेमियन के तरफ से पेश हुआ हर एक सुनने वालों के लिए। अगला भजन सुनने वालों रोटरडम ज्यूरिख से माता श्री धर्मदेव शिवपाल बालगोविंद जी अपने सभी बच्चों के साथ में पेश करती है।

हनुमान तेरा क्या कहना, रोतराम जायद से माता श्री धर्मदेव शिवपाल बाल गोविंद जी अपने बच्चों के साथ में हर एक सुनने वालों के लिए पेश किए है। भजन सुनने वालों, इस बार पेश होने जा रहे हैं डगमगाटिंग सफोरा, रोतराम होफलीत, आफरलिंग 237 पर है और ऑफर्स ही अब स्वैक नंबर 59 पर। डायरेक्टरीस मुफराओ अशा भगू के तरफ से हर एक सुनने वालों के नाम है आज की शुभ के प्रोग्राम में, और बड़े प्रेम के साथ ये भजन को मांग करती है।

माता भजन पेशवा है होकफ्लीट से माँ इरेना लक्ष्मण अपना बेटा अश्विन लक्ष्मण के साथ पेश किए है आज की प्रोग्राम में। इस बार जो भजन पेश है सुनने वालों जूतरमेर के रहने वाली माता श्री एस महादेव अर्जुन शर्मा जी अपने सभी बेटा बेटी दामाद पतो क्लाइंट केंद्रन और अख्तर क्लाइंट केंद्रन के साथ हर एक को एक मंगलमय दिन पेश करती है।

राम भजन पेश हुआ। सुनने वालों, जूतरमेर शहर से माता श्री एस महादेव अर्जुन शर्मा जी अपने सभी बेटा बेटी दामाद पतो क्लाइन केंद्रन और अख्तर क्लाइन केंद्रन के साथ पेश किए हैं। आनंद अर्जुन शर्मा जी और सुंदा बेफी के तरफ से पेश है ये मधुर भजन आज की प्रोग्राम में।

तेरा दर्शन करके जाऊं, लोग कहे जय माता की। पेशवा आनंद जून शर्मा जी और सुंदा बेफी के तरफ से अमोर एफएम का डायरेक्टर श्री सुभाष गोगार जी, श्रीमती आशा गोगार जी, सोनाता और राजा हर एक सुनने वालों को एक मंगलमय दिन पेश करते हैं।

धूप दिखाई देंगे। और उसके बाद कहा जाता है बृहस्पतिवार से टेम्परेचर जो है तापमान थोड़ी और ऊंचे चले जाएंगे, 16 से लेकर 19 डिग्री तक। ओके लुइस्टर्स, वंदाग दिनसडाग 5 मई 2026, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, जहाँ तक अमोर एफएम का प्रोग्राम सुनाई देता है, बस प्यार ही प्यार पहुँचे आप सब तक। सूर्य देव को आइए हम नमन करें।

विनती करते हैं हम सब प्रभु जी, सूर्य भगवान, रखना हमारा ध्यान. Amor Radio hai sunne walo. Vandaag is het dinsdag. Om 9 uur hebben we het programma Vichar Manthan van radio collega Pandit Deepak Baijanath ji.

तेरा ही है सहारा और तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। अबीरा खानम जी की आवाज़ में अभी आप सुने सुनने वालों हियर बाय द पावर ऑफ लव अमोर FM। geworden 6 minuten voor half 9, 6 minuten voor half 9. 6 minuut baki hai, 8:30 बजने।

तू प्यार का सागर है और सागर दया का तू है, और तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। हल्फ नहीं खन खबरदन 8:30 बज रहे हैं, सुनने वालों अमोर रेडियो है।

मेरा चेहरा मेरी आँखें मेरी गेसूं तुम हो. प्रख्तक नुमर लविस्तरार्स एक गज़ल. मेरा चेहरा मेरा आँखें मेरी गेसूं तुम हो. सचिन शर्मा जी की आवाज़ में अभी आप सुने हियर बाय द पावर ऑफ लव अमोर एफएम. मुफ्राउ रीता मलहू खुद मोर्ख मुफ्राउ रीता मलहू एंड लक्ष्मण एंड लक्ष्मी आउट स्केवेनिंगन ओक एन हेले खुद मोर्ख. मिनट जयंती बेनी आपको भी एक शुभ दिन हो. मुफ्राउ सीला अकनहाई एंड दिट इस मुफ्राउ सीला कन्हाई आउट डेन हाग आपको भी एक शुभ दिन हो. Ja, met mij gaat het goed, dank u wel. Sita uit Den Haag, Jai Shri Ram, ik shubdin ho. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Fijn dat u heeft genoten en blijft genieten. Mevrouw Rosa Harpal, aapko bhi shubh ke naman hum karte hai, dank u wel. Mevrouw Henna Raghubar Bidesi uit Arnhem, welkom, goedemorgen. Meneer Sewa Dham, Kipure Kuruko bhi, Ram Ram, namaskar. Mevrouw Esha Kalapnaat uit Den Haag, ook welkom, goedemorgen. Mevrouw Vera Bhikhaji, Dr. Sham, goedemorgen. Shubh Mangalwar, aapko bhi, Sat Sri Akaal. En dan zie ik zus Mers, dank u wel. Ook een hele goede morgen en een krachtige dag toegewenst. En eventjes kijken, mevrouw Netaji, aapko bhi shubh ke shuruaat achhi se ho. हो गया है क्यों करके भजन प्रोग्राम आप बड़े लगन से सुनते हो तो शुभ दिन हो आपको भी. एंड मीना एंड क्रिस आई देन हाग ओक एन हेले गुड मोर्ग. एल्सा आई आलमलो वेदरम वेलकम फंडाग. एल्सा आई आलमलो एन अ फाइन डाग ओक आन मनेर मदन संगम जी आई स्कीदम. En Henk en Shama uit Voorburg, ook goedemorgen, dankjewel. Uit Amsterdam, mevrouw Mila Dhume, swagatam aapko karte hain. Fijn dat u er ook bent, dankjewel, dankjewel. En mevrouw Sonia ji, shubdin ho aapko bhi. En dan zie ik Urmila en Alwin uit Venhuizen. Bahut bahut dhanyawad, dank jullie wel en ook een mooie dag toegewenst. 8:08 geworden, luisteraars. Ik hoor namunaham aapke naam karte hain Ghulam Abbas ji ki awaaz mein.

0: प्रिय सुनने वालों, आप ही का मन प्रिया अमोर एफएम है और आइए आज पुनः आप सबके पास आए हैं अमोर एफएम द्वारा आप ही का कार्यक्रम विचार मंथन लेकर, एक से एक गंभीर से गंभीर, सुंदर से सुंदर टॉपिक लेकर, विषय लेकर आप सबके पास आते रहते हैं हम सब। और आज पुनः हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित है हमारे ही सामने हमारा ज्येष्ठ भ्राता, बहुत ही मान्यवर आचार्य पंडित वरुण शर्मा जी, जिनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाई फहार्त वेलकम,
1: धन्यवाद भैया,
0: स्वागतम,
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
0: भाई।

0: En nu, reclame.
1: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. कुंडली से विचारते हैं, जन्म कुंडली हाथ देखकर आपको राय देते हैं, इसका ओप्लोसिंग ढूंढते हैं, मंत्र तंत्र से दूर कर देते हैं, आपको जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस फिनेंशियल नहीं खतीफ एनर्जी फैमिली रिलेशन पैसे को आपको प्रॉब्लम है, सब हल कर देते हैं। गुरुजी रविशंकर जो भारत देश से आए हुए हैं, एस्ट्रोलॉग हैं। तार दीजिए 9613 99 96 95 0613 39 96 95.
2: Goudservice Moederdag. Goudservice
3: Moederdag. Juwelier Goudservice, Hoflandplein 16, Den Haag, Hoekhaagse Markt.
2: Moederdag Goudservice.
3: Moederdag
2: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoopgoud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
3: Goudservice.
2: Moederdag.
3: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden. Moederdag.
2: Goudservice.
3: Moederdag.
2: Goudservice.
3: Moederdag.
2: Goudservice.
3: Juwelier Goudservice. Hoflandplein 16. Den Haag. Kijk op goudservice.nl. Goudaankoop.nl.

0: हर बार दुआ मांगे मेरे दिल का धड़कना के लग जाए मेरी उम्र तुझे सजना। मिताली सिंह जी की आवाज में अभी आप सुने सुनने वालों द पावर ऑफ लव अमोर एफएम। इट इज क्वार्टर ओवर 10 geworden। वट वी गान डून, एवं कैक dan ga ik u blij maken. U mag bellen, een babbeltje maken, kuch baate honge, kuch guftagu honge, aur badle mein kya hoga, dan ga ik u strakjes vertellen. 010-244-7250 mag u inbellen. 010-244-7250 mag u inbellen. Als u een praatje wil maken, als u een babbeltje wil maken, lekker, gezellig, een beetje lachen of iets serieus wat u denkt, dan mag u nu inbellen op 010-244-7250. Mag u inbellen. Ik ga de lijnen openstellen, luisteraars. Toe aap taarker, zegt hij. 010-244-7250. Even kijken. 010-244-7250. Met Bea een hele goede morgen, welkom.
1: नमस्ते देवी या देवी जी, शिव गोविंद शिव नारायण से बात करते हो आप?
0: नमस्कार मिनर शिव गोविंद जी, कैसे बात हो?
1: बस बहुत अच्छा है, ये आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम लोग दोनों बैठ कर।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तो आज ना गए लो खेते?
1: अरे वो तो हम फर्स्ट लाफ बांट दिया, वही हम बोली प्रोग्राम सुन ले, देखी थोड़ा से तोर आवाज सुन ले बतिया ले, तब हम निखरी ले। अब
0: ओ अच्छा, कैसे है उधर के मौसम?
1: मौसम घाम निकसा ले देवी जी।
0: ओ अच्छा अच्छा,
1: सब हाँ। हरी भरी दिखा रहा, पेड़ पालो हिल रहा है सब।
0: हाँ हाँ ना,
1: आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छा बाटी, बहुत बहुत धन्यवाद मिने श्री गोविंद जी।
1: अरे अब एक हाथ बजावे से ठपोड़ी ना बजे, दोनों रंग से चाहिए तो।
0: हाँ, हाँ,
1: आप तो हमेशा हम लोग को पूछते हैं, अगर हम भुला जाएंगे आपको पूछने को तो हाँ? माफ कर देना।
0: नहीं हर्द में कोई बात नहीं, आप तार करो बस, वही सबसे बड़ी बात है।
1: देखो इंसान से कोई जब बात करे है
0: जी,
1: तो हम दूसरे के ना जाने हम तो बहुत खुश हो जाएगा।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वैसे दरादियों पर हमारे पास बहुत बहुत से बात है, लेकिन मैं न जानू क्या बोलू और क्या ना बोलू
0: जी।
1: अब वे तो पंडित जी के प्रोग्राम सुने हमने।
0: हाँ, बहुत ज्ञान भरी तो, प्रोग्राम थे। हा?
1: अरे वो ज्ञान देतना, ये ज्ञान जो हम शुरू से सुने हुई थी, हम पंडित हो गई थी।
0: ओ अच्छा।
1: हाँ
0: हाँ,
1: हम भी हिंदुस्तानी स्कूल गयी मजिदिया पासी में।
0: हाँ?
1: छठवा बुक तलक पढ़ ली बाटी हम
0: जी।
1: हमारे जितने साथी थे देविये थे, बहुत पंडित और कैसे फ्रौल के पंडित के कैसे बोला जाए,
0: पंडिता
1: हो गए ने।
0: हाँ?
1: बहुत सब चला गए भैया, अब यही एगो हम बचल बाटी। अरे और हो हम जोन के ना जाने ला, तब बहुत से बहुत ज्ञान अब मुड़ी में है
0: जी,
1: और ढेर ढेर ज्ञान हम भुला जाए ला। और फिर भी हम जितना हो सके ज्ञान दे ला रेडियो पर कभी।
0: हाँ?
1: आमने सामने तो भेंट ना हो, हम तो बहुत दूर घर से ना निकसीला
0: ना,
1: यही रेडियो से तो लोग के थोड़ा मनी बोल दे ला कुछ ना कुछ।
0: हाँ अच्छा अवसर है तो बोल सक। कोनो गाना है जो आप मांगो है सुने?
1: गाना तो हम अपने धर्म पत्नी खातिर एगो हो सके तो दराई कर दियो।
0: अच्छा अकाउंट कोई आपके चॉइस है कि हम आपके लिए चुन दे?
1: हाँ मेरे को धरे बाटी
0: बोलो।
1: प्यार छुपता नहीं छुपाने से।
0: हाँ
1: ये बजा दे तो हमारे धर्म पढ़नी खातिन।
0: अरे वो तो विशाल गाना बा।
1: हाँ बाकी हम तो एक बार बोल चुके बाकी हमें याद ना है।
0: हाँ।
1: अगर आप लोग के कृपा हो परम पिता परमेश्वर के जे दुनिया के रखवाले है
0: जी
1: तो फिर से तक यार हो जाये।
0: क्या बोल लो फिर से तक यार?
1: हाँ चौरा चौसठ फिर से तक यार।
0: हाँ
1: विवाह के होएगा।
0: अच्छा हाँ।
1: बकिन आप कैसे बोले कभी गिर जाल जाए कभी खड़ा हो जाल जाए तो जिंदगी के चलने के नाम जिंदगी या रुकने के नाम मृत्यु।
0: बस वही बात।
1: अगर ये गाना बजा दे तो
0: हाँ?
1: तो हम अपने दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुखी रहो इसने पुरखरमा बनाते रहो और सारी संसार को खुशियां देते रहो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपके मनीर शिव नारायण जी।
1: आपके आप लोग के पास तो सब कुछ है रेडियो स्टेशन और मैं जो देता हूँ अपने दिल से आशीर्वाद।
0: हाँ
1: हम तो आशा करते शायद बहुत कोई अभी ना बोला होगा रेडियो पर लेकिन हम अपने दिल से आप लोग सब टीम को सारा संसार को सुख शांति बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा तो गाना हम आपके लिए चुन कर रख ली है इश्क छुपता नहीं छुपाने से।
1: बहुत बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद।
0: कोई धन्यवाद नहीं पत्नी को मेरा प्यार देना और फिर न
1: हमें मुस्की मारे हमारे बगलिये में बैठा रहे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मोई से लुत्फ लियो खनी तरफान और फिनो बतिया कोई कभी अवसर।
1: अच्छा, भैया देवी जी आपके धन्यवाद।
0: अच्छा,
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: राम राम।

0: लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी है।
1: अरे लो ना, कंबल से भी कोई जिद है।
2: और तुम?
1: अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक? अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी।
2: मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है?
1: कल तक कोई नहीं था, लेकिन अब है, कोई शक?

0: हाय हाय हाय हाय,
1: हटो ना, क्या करते हो?
0: ओए ओए, पूछा जो प्यार क्या है,
1: ओहो
0: शर्मा के मार डाला
1: जाजा।

पूछा जो प्यार क्या है तो शर्मा के मारे डाला। अशिया भोसले लयसराज एंड किशोर कुमार एंड खेतुनी था अशिया भोसले का जो श्रद्धांजलि है हेल बेनकोर्त इन रोटरडम। ब्लाइफ ऑन से बरिख्त फोल्ग लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार जी है जीवन एक पत्र।

एक बात पूछूं लता जी एंड मोहम्मद रफी जी, सुनने वालों आपको सुनाए बड़े प्रेम के साथ ये गीत को, एक गीत और एंड दारना रिक्लाम ब्लॉक एंड दारना ऑफलाइन बरिखते हैं।

मेरा सादर प्रणाम और आदाब। मैं हूँ बेया, अमोर एफएम नीदलम से बोल रही हूँ। मृत्यु समाचार, मौत की खबर पढ़ा जाएगा। आप लोगों को मालूम है, फिर भी हम याद दिलाते हैं। वही देता वही लेता, उसी का है संसार। एक आटा एक जाटा, ये जग का है व्यवहार। प्रोग्राम में सुनने वालों, सात परिवार की मृत्यु समाचार, मौत की खबर है। सोमवार मई की 4 तारीख को 59 वर्ष की आयु में स्पैकनेस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी की मृत्यु हो गई है। सोमवार अप्रैल की 27 तारीख को 92 वर्ष की आयु में रोटरडम पालाडियो स्ट्रात नंबर 56 की रहने वाली माता श्री शिवदासी नेपाल भोला की मृत्यु हो गई है। बृहस्पतिवार अप्रैल की 30 तारीख को 99 वर्ष की आयु में डेनहाग एस्परांतो स्ट्रात नंबर 12 की रहने वाली माता श्री सुखिया जगन्नाथ भरोसा की मृत्यु हो गई है। शुक्रवार मई की 1 तारीख को 55 वर्ष की आयु में डेनहाग इसिंग स्ट्रात 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद सिंह केवल भान सिंह की मृत्यु हो गई है। सोमवार मई की 4 तारीख को 69 वर्ष की आयु में रोटरडम की रहने वाली सीता बंधु की मृत्यु हो गई है। शनिवार मई की 2 तारीख को 67 वर्ष की आयु में डेनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू की मृत्यु हो गई है। रविवार मई की 3 तारीख को 99 वर्ष की आयु में रोटरडम बेफरवार रेनोव सिंगल की रहने वाली माता श्री मतिल्डा लखपतिया बसदेव सिंह महावीर पांडे की मृत्यु हो गई है।

लांगनडेग स्ट्रैट की रहने वाली श्रीमती मटिल्डा गौरीचरण की मृत्यु हो गई है। ये दो परिवार की मृत्यु समाचार शाम 6 बजे पढ़ा जाएगा। इस वक्त के साथ अमोर एफएम नीदरलैंड द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं 7 परिवार की मृत्यु समाचार। मौत की खबर सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए, मेहती कृपा कीजिए।

स्पैगनेस से समस्त परिवार ओरी और समस्त परिवार कुंज बिहारी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। सोमवार मई की 4 तारीख को रात में 9:15 पर 59 वर्ष की आयु में मांडा 4 मई gisteren om 9:15 in de avond in de leeftijd van 59 jaar. Ma dharam vati ori bansi aur swargay pita siv ori ka beta. Patni Sunita ori kunj bihari ka pati. Do beta Avinash Kumar aur Stephen Jayant Kumar ka pita. 5 bhai aur 2 behen, Suresh, Rajesh, Sarvan, Sharmila, Randhir, Manoj aur Gayatri Ori ka bhai, 5 chutki ka Barku, 1 behnoi ka Sar, 19 larkan ka Dada, Mama, Aja aur Nana. स्पैकनेस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी, आप इन्हें ज़्यादा सुनील के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। शव दर्शन करने के लिए अवसर रोसेंट्रम द ओमरिंग। स्पैकनेस ऑपरेल्स वैग नंबर 3 पर आज मंगलवार मई की 5 तारीख और कल और आने वाले बृहस्पतिवार मई की 7 तारीख को शव दर्शन करने के लिए अवसर रॉ सेंट्रम द ओमरिंग स्पैकनेस ऑपरेल्स वैग 3 पर आज मंगलवार मई की 5 तारीख को शाम 6 से रात 7 बजे तक, आने वाले बृहस्पतिवार मई की 7 तारीख को शाम 6 से रात 7 बजे तक, अर्थी शुक्रवार मई की 8 तारीख को दिन देर और 3 के दरमियान स्पैकनेस ऑपरेल्स वैग नंबर 3 क्रिमाटोरियम द ओमरिंग में दाह क्रिया की जाएगी। गलेगनहेड तो रोबसुक इन रो सेंट्रम द ओमरिंग आन द ऑपरेल्स वैग नंबर 3 ते स्पैकनेस वंदाग दिनसडाग 5 मई वन 6 टोट 7 उर इन द आवन आनस्टांडे डोंडरडाग 7 मई वन 6 टोट 7 उर इन द आवन एन द क्रिमाटी प्लेक्टिगेड साल प्लाट्स विंदे फ्राइडाग 8 मई टुसे 1:30 एन 3 उर इन द मिडाग इन क्रिमाटोरियम द ओमरिंग आन द ऑपरेल्स वैग 3 de spijkenissen. Daar kan een bezoek zijn we daarna pregat karne ke liye aur jankari ke liye diya ja raha hai 06 45 46 11 92 समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए हमारे सुनने वालों और परिवार की मृत्यु समाचार आप सुनने के लिए ध्यान दें। रोटरडम फिंकनब्रिंक स्ट्रैट नंबर 229 से समस्त परिवार अटवारू बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। सोमवार मई की 27 तारीख को कहिए अप्रैल की 27 तारीख को मांडाग 27 अप्रैल योंगसलेदन ओम 10 मिनटन फोर 5 इन द मिडाग इन द लेफ्टाइट फॉन 92 यार 92 वर्ष की आयु में स्वर्गीय माता और पिता हरद्वार भोला और सुरुचबासी सुमारू की बेटी स्वर्गीय पति ईश्वरी प्रसाद नेपाल की पत्नी स्वर्गीय बेटा गणेश अटवारू की माँ पतो गीता अटवारू की सास अनवर और देविका की आजी किशन घरबरन

की अजियासास मयूर घर पर की पर आजी रोटरडम पालाडियो स्ट्रैट नंबर 56 की रहने वाली माता श्री शिवदासी नेपाल भोला की मृत्यु हो गई है कपेल एंड एसल का एसलम सिकन हाउस में अर्थी कल बुधवार मई की 6 तारीख को अर्थी कल बुधवार मोरखन वूंसदाग 6 मई को दिन में 2:30 बजे रोटरडम जॉइंट मार्टलिंगवेग 101 क्रिमेटोरियम देला आंडफान में दाह क्रिया की जाएगी। नीदरलैंड से समस्त परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। बीते हुए सोमवार अप्रैल की 27 तारीख को शाम 4:50 पर 92.9 वर्ष की आयु में स्वर्गीय बरकू और बरकी राजास नेपाल और राजदे नेपाल देवी की छुटकी वती शीला सेली विद्या चंद्रा और प्रेम नेपाल स्वर्गीय दो बेटा जगदीश और रॉबर्ट नेपाल की काकी अंकु हारी रोमेयो मून सेल्फी रोसलिन इना और स्वर्गीय दामाद बायो की ककिया सास 21 लड़कन की आजी और नानी और 18 लड़कन की पर आजी और पर नानी रोटरडम पालाडियो स्ट्रैट नंबर 56 की रहने वाली माता श्री शिवदासी नेपाल भोला की मृत्यु हो गई है कपेल एंड एसल का एसलम सिकन हाउस में अर्थी कल बुधवार मई की 6 तारीख को दिन में 2:30 बजे रोटरडम जॉइंट मार्टलिंगवेग 101 क्रिमेटोरियम देला आंडफान में दाह क्रिया की जाएगी। Crematieplechtigheid zal plaatsvinden morgen woensdag 6 mei om 2:30 in de middag te crematorium Dela aan de Vaan aan de Matelinkweg nummer 101 Rotterdam Zuid. Semes pariwar hiti premio ko khabar karte hue Amor FM Nederland dwara aur pariwar ki mrityu samachar.

Den Haag, Jacob Jordaansplein से समस्त परिवार जगन्नाथ बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। बृहस्पतिवार अप्रैल की 30 तारीख को सुबह में 1:10 पर 90 वर्ष की आयु में Donderdag 30 april jongsleden om 10 minuten over 1 in de nacht in de leeftijd van 90 jaar. Beta Sivnarayan Jagannath or Swargay Beta Ramnarayan Jagannath ki ma. Swargay Pota Shiroj Jagannath ki aji. Den Haag Esperanto Straat 12 की रहने वाली माता श्री सुखिया जगन्नाथ भरोसा आप इन्हें ज्यादा लीना के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज मंगलवार मई की 5 तारीख को दिन में 2 बजे Den Haag Okenburg Straat 21 क्रिमेटोरियम Okenburg में दाह क्रिया की जाएगी। Den Haag Loma Sirel Laan से समस्त परिवार गणपत समस्त परिवार भरोसा बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। बृहस्पतिवार अप्रैल की 30 तारीख को सुबह में 1:10 पर 90 वर्ष की आयु में बेटी और दामाद श्यंद्रा गणपत भरोसा की माँ राजेंद्र कुमार गणपत की सास रितेश कुमार श्रवण कुमार और राशनी गणपत और साथ में शिवानी बेंदा गणपत की नानी ईशानी गणपत और रायन बेंदा की ननिया सास रोशन बेंदा की परनानी Den Haag Esperanto Straat 12 की रहने वाली माता श्री सुखिया जगन्नाथ भरोसा आप इन्हें ज्यादा लीना के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज मंगलवार मई की 5 तारीख को दिन में 2 बजे Den Haag Okenburg Straat 21 क्रिमेटोरियम Okenburg में दाह क्रिया की जाएगी। परिवार के ओर से ये सूचना दी जा रही है कि निवास स्थान पर शोक सभा बैठक नहीं है। रोटरडम नेदरलैंड से समस्त परिवार भरोसा और समस्त परिवार मंगरे बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। बृहस्पतिवार अप्रैल की 30 तारीख को सुबह में 1:10 पर 90 वर्ष की आयु में बेटी और दामाद श्रीमती हिल्डा भरोसा की फुआ श्रीमान अशोक मंगरे की फुआ सास नवीन और रायन की नानी नतपतो लीशन की नन्या सास 3 लड़कन की परनानी स्वर्गीय भाई और भौजी मनबोध भरोसा की बहन बुधरानी भरोसा संगम की ननद सभी लड़कन की फुआ फुआ सास आजी अजिया सास नानी ननिया सास पर आजी और पर नानी Den Haag Esperanto Straat नंबर 12 की रहने वाली माता श्री सुखिया जगन्नाथ भरोसा आप इन्हें ज्यादा लीना के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज मंगलवार मई की 5 तारीख को दिन में 2 बजे Den Haag Okenburg Straat 21 क्रिमेटोरियम Okenburg में दाह क्रिया की जाएगी। क्रेमाटीप्लेक्टिगेट zal plaatsvinden vandaag dinsdag 5 mei om 2 uur in crematorium Okenburg aan de Okenburgstraat 21 in Den Haag.

परिवार के ओर से यह सूचना दी जा रही है कि निवास स्थान पर शोक सभा यानी बैठक नहीं है, खेन और रोजिटिंग आन हाउस। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए सुनने वालों और परिवार की मृत्यु समाचार। दनहाग इसिंग स्रात नंबर 135 से समस्त परिवार केवल भान सिंह और समस्त परिवार रघुनाथ बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शुक्रवार मई की पहली तारीख को 55 वर्ष की आयु में फ्रेडाग 1 मई योंगस्लेदन इन द लेफ टाइट फ्रॉम 55 यार स्वर्गीय माता और पिता शीला केवल भान सिंह, महताप सिंह और सुरुजपाल केवल भान सिंह का बेटा, पत्नी श्रीमती शारदा केवल भान सिंह रघुनाथ का पति रायश्री और भारत केवल भान सिंह का पिता, दामाद अमरेश रामजस का ससुर, अमायरा और शनाया रामजस का नाना, पोता यशवीर केवल भान सिंह का आजा, कमली सुनीता और जीत केवल भान सिंह का भाई, मुकेश कालीदीन और सत्या लक्ष्मी नारायण सिंह का सार, छुटकी फेरा का बरकू। दनहाग इसिंग स्ट्रात नंबर 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद केवल भान सिंह की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल बुधवार मई की 6 तारीख को शाम 4:30 बजे हैन नोर्थ साइफ्योल नंबर 3 क्रिमाटोरियम हुक्सवार में दाह क्रिया की जाएगी। सूरीनाम और नीदरलैंड से समस्त परिवार केवल भान सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शुक्रवार मई की पहली तारीख को 55 वर्ष की आयु में नौ फुआ चांद सोनी मीन हेल्दा शर्मा एल्स गायत्री आशा और कार्ला चार काका देव सुंदर सुरेश और राजन स्वर्गीय तीन काकी कहिए स्वर्गीय तीन काका रामबरन रामस्वरूप और रामधानी तीन फूफा और पांच काकी का बेटा सभी लड़कन का भाई काका दादा मामा नाना और आजा स्वर्गीय पिता और माँ सूरजपाल झूरी केवल भान सिंह और शीला महताप सिंह का बेटा स्वर्गीय आजा और आजी शिव नारायण केवल भान सिंह और बंसराजी उमराव सिंह का पोता। दनहाग इसिंग स्ट्रात 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद केवल भान सिंह की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल बुधवार मई की 6 तारीख को शाम में 4:30 बजे हैन नोर्थ साइफ्योल नंबर 3 क्रिमाटोरियम हुक्सवार में दाह क्रिया की जाएगी। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए सुनने वालों और परिवार की मृत्यु समाचार। रोटनाम हॉलांस स्त्रात से समस्त परिवार बंधु और समस्त परिवार कीरपाओ बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। सोमवार मई की 4 तारीख को सुबह में 3:30 बजे 69 वर्ष की आयु में मांडाग 4 मई गिस्तरन ओम 4:30 इन द नाट इन द लेफ टाइट फॉन 69 यार स्वर्गीय माता और पिता रामुनी नोहर बंधु और अतवारु बंधु की बेटी, दो बेटी रेशमा किरपाल और साधना बंधु और स्वर्गीय बेटी जयंती किरपाल की माँ, रेमोन डेल रोसारियो सिल्फाना किरपाल, स्वस्तिका बंधु नताशा किरपाल और वरुण मंगरूलाल की नानी, दो नद्दमाद रविनेश बिहारी और राजीव छोटू की ननिया सास, रोतदम की रहने वाली सीता बंधु की मृत्यु हो गई है।
शो देखने के अवसर बनाया जा रहा है एटवर्ट सेंट्रम देला विल्सांग रोटरडम विल्सांग नंबर 35 पर आज मंगलवार मई की 5 तारीख को रात 7 से 8 बजे तक फन 7 टू 8 यूर इन द आफ्टरनून अर्थी बुधवार मई की 6 तारीख को दिन में 10:45 और 12:45 के दरमियान स्कीदाम बुर्गमेस्टर फन हारन लान नंबर 1450 क्रिमेटोरियम बेकनहॉफ में दाह क्रिया की जाएगी। रोटरडम सेंट अंद्री स्ट्रात से समस्त परिवार बंधु और समस्त परिवार दीहाल बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। सोमवार मई की 4 तारीख को कल सुबह में 3:30 बजे 69 वर्ष की आयु में बहन सेल्फी बंधु की बहन स्वर्गीय छोटकू रोनी दीहाल की बड़की रोटरडम की रहने वाली सीता बंधु की मृत्यु हो गई है। शव देखने के लिए अवसर एटवर्ट सेंट्रम देला विल्सांग रोटरडम विल्सांग नंबर 35 पर आज मंगलवार मई की 5 तारीख को रात 7 से 8 बजे तक अर्थी बुधवार मई की 6 तारीख को कल दिन में 10:45 और 12:45 के दरमियान स्कीदाम बुर्गमेस्टर फन हारन लान नंबर 1450 क्रिमेटोरियम बेकनहॉफ में दाह क्रिया की जाएगी। डेन हाग ब्रांडस्ट्रात नंबर 45 से समस्त परिवार हरपाल बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। कल मंगलवार मई की 4 तारीख को सुबह में 3:30 बजे 69 69 वर्ष की आयु में भौजी रीता हरपाल की ननद स्वर्गीय भाई लोला बंधु की बहन 5 लड़कन नीता शरीता राजेंद्र सबीता और आशा बंधु की फुआ 3 दामाद और 1 पतो की फुआ सास 12 लड़कन की आजी और नानी 5 लड़कन की पर आजी और पर नानी स्वर्गीय माता और पिता रामुनी नोहर बंधु और अतवारू बंधु की बेटी रोटरडम की रहने वाली सीता बंधु की मृत्यु हो गई है। शव दर्शन करने के लिए अवसर अल्टवाट सेंट्रम देला विल्सांग रोटरडम विल्सांग नंबर 35 पर आज मंगलवार मई की 5 तारीख को रात 7 से 8 बजे तक अर्थी कल बुधवार मई की 6 तारीख को दिन में 10:45 और 10:45 के दरमियान तुसे 11:15 एंड 11:15 स्कीदाम बुर्गमेस्टर फन हारन लान नंबर 1450 क्रिमेटोरियम बेकनहॉफ में दाह क्रिया की जाएगी। समस्त परिवार हित प्रेमियों को खबर करते हुए हमारे सुनने वालों और परिवार की मृत्यु समाचार।

देन हाग से समस्त परिवार सुखू और समस्त परिवार मंगरू बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शनिवार मई की 2 तारीख को सुबह में 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में जातरा मई योंगसले Then, om 8:55 's morgens in de leeftijd van 67 jaar. Patni Srimati Evelien Sukhukapati, Varika Vandana Deepak Kiran or Janette Kapita, Stephen Isha or Vishaka Sasur, Deslerken Kanana or Raja, Swergay Mata or Pita, Sukrani Raghu Mangru or Sukhnarayan Mangru. का बेटा दनहा का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू आप इन्हें ज्यादा राज के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव दर्शन करने के लिए अवसर रौसेंट्रम ओंसजोर दनहा त्रिपस्त्रात 309 पर बृहस्पतिवार मई की 7 तारीख को दिन 11 से लेकर के 12:30 तक अंतिम क्रिया बसलोतकरी में की जाएगी। दनहाग से समस्त परिवार कन्हाई बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शनिवार मई की 2 तारीख को सुबह में 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में सारू और बड़की जॉन कन्हाई का सारू भाई सीला कन्हाई का छुटकू अश्वंत अंशला और वीरेश का मौसा दो पतो और एक दमाद का मौसवा ससुर 5 लड़कन का नाना और आजा दनहा का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू आप इन्हें ज्यादा राज के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने के लिए अवसर रौ सेंट्रम ओंसजोरख दनहा त्रिपस्त्रात नंबर 309 पर बृहस्पतिवार मई की 7 तारीख को दिन 11 से 12:30 तक अंतिम क्रिया बसलोतकरिंग में की जाएगी। सीदाम से समस्त परिवार मुंशी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। बीते हुए शनिवार मई की 2 तारीख को सुबह में 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में सारू भाई और साली हरी मुंशी का सारू भाई चंद्रा मुंशी का बहनोई 3 बेटी शाशिनी मुंशी सुषमा रघुनाथ मुंशी और रशिता मुंशी विशेषर का मौसा 3 दमाद रोद्रिको कानीबानो युगेश रघुनाथ और अरमंत विशेषर का मौसवा ससुर रोहन और नोरा कानीबानो आरवियन विशेषर और नयन रघुनाथ कानाना दनहा का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू आप इन्हें ज्यादा राज के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव दर्शन करने के लिए अवसर रौ सेंट्रम ओंसजोरख दनहा त्रिपस्त्रात 309 पर बृहस्पतिवार मई की 7 तारीख को दिन 11 से 12:30 तक अंतिम क्रिया बसलोतकरिंग में की जाएगी। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए सुनने वालों और परिवार की मृत्यु समाचार।

रोटरडम कोकर स्ट्राट नंबर 63 से समस्त परिवार बंधु बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। सोमवार मई की 4 तारीख को सुबह में 3:30 बजे 69 वर्ष की आयु में मांडा फिर में योंगस्लेदन और हल्फ फिर इन द नाख्त इन द लेफ्टाइट फॉर 69 यार भाई और भौजी रूडी बंधु की बहन बेया बंधु की ननद 3 बेटी शान शकीता और तनीषा की फुआ दमाद राकेश नगेसर की फुआ सास और वेदांश नगेसर की नानी। रोटरडम की रहने वाली सीता बंधु की मृत्यु हो गई है। शव देखने के लिए अवसर अल्टवार सेंट्रम देला वेल्सांग रोटरडम वेल्सांग नंबर 35 पर आज मंगलवार मई की 5 तारीख को रात 7 से 8 बजे तक फन 7 to 8 इन द आवंड। आर्टिकल बुधवार मई की 6 तारीख को दिन में 12:45 and 12:45 के दरमियान स्कीदाम बुर्गमेस्टर फन हारनलान नंबर 1450 क्रेमेटोरियम बुकनहॉफ में दाह क्रिया की जाएगी। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को खबर करते हुए अमोर एफएम नीदरलैंड द्वारा सुनने वालों एक आखिरी परिवार की मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दें। रोटरडम बेफरवाद रैनोव सिंगल से समस्त परिवार वासदेव सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। रविवार मई की 3 तारीख को रात 10:30 बजे 98 वर्ष की आयु में जोंदाग 3 मई योंगस्लेदन ओम हालफ एलफ इन द आवंड इन द लेफ्टाइट फन 98 यार स्वर्गीय पति शिव मोहन वासदेव सिंह की पत्नी बेटा और पतो रोनी वासदेव सिंह की माँ मोहनमती वासदेव सिंह छोटेलाल की सास जयंत और सूरज वासदेव सिंह की आजी नतपतो निशा वासदेव सिंह की अजिया सास परपोता और परपोतीन अमाया और रियांश वासदेव सिंह की पर आजी। रोटरडम बेफरवाद रैनोव सिंगल की रहने वाली माता श्री मतिल्दा लखपतिया वासदेव सिंह महावीर पांडे की मृत्यु हो गई है। शव दर्शन करने के लिए अवसर रॉ सेंट्रम मोनिता मेमोरियम रोटरडम लंगनहॉर्स्ट नंबर 100 पर बुधवार कल मई की 6 तारीख को रात 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक अर्थी शुक्रवार मई की 8 तारीख को शाम में 4 बजे रोटरडम लंगनहॉर्स्ट नंबर 100 क्रेमेटोरियम मोनिता मेमोरियम में दाह क्रिया की जाएगी। समस्त परिवार हिति प्रेमियों को ये खबर दी जा रही है।

लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। आना और जाना इस मृत्यु लोक की रीत है। सुनने वालों से निवेदन गुजारिश है, मृत्यु समाचार, मौत की खबर और आगे तक पहुंचा देने को अमोर FM समस्त परिवार को शोक संवेदना प्रकट करते हुए, दुखित परिवार के दुख में शामिल होते हुए, गमजदा रिश्तेदार के गमी मातम में शरीक होते हुए, सहन शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं। यहाँ तक पढ़ा गया है सुनने वालों, अमोर FM नीदरलैंड द्वारा मृत्यु समाचार, मौत की खबर। सुनने वालों को हम याद दिलाते हैं कि आज शाम में 6 बजे हॉलैंड की समय और सूरीनाम देश में वहां का समय रात्रि में 6:15 बजे एक बार फिर मृत्यु समाचार, मौत की खबर पढ़ा जाएगा। Beste luisteraars, tot zover overlijdensberichten voor nu. Wij condoleren alle nabestaanden en wij wensen u allen heel veel sterkte toe.

जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जाने वाले की यादें जो है वो हमेशा दिल में रहते हैं। शनिवार मई की 2 तारीख को सुबह में 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में इस संसार से हमेशा और हमेशा के लिए चला गया, पिछड़ गए अपने परिवार, अपनी हेती प्रेमियों से डनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू, आप इन्हें ज़्यादा राज के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हुई। अंतिम क्रिया बसलोतकरिंग में की जाएगी। डनहाग से पत्नी श्रीमती एफलीन सुखू, अपना पति वारिका, वंदना, दीपक, किरण और शानेत, अपना पिता स्टीफन, ईशा और विश, अपना ससुर, 10 लड़कन, अपना नाना और आजा, स्वर्गीय माता और पिता सुखरानी रघु मंगरू और सुख नारायण मंगरू, अपना बेटा के आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए और मांग करते हैं।

शनिवार मई की 2 तारीख को सुबह में 8:35 पर 67 वर्ष की आयु में डनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू, आप इन्हें ज़्यादा राज के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हुई। अंतिम क्रिया बसलोदकरेंग में की जाएगी। डनहाग से दुखित परिवार पत्नी श्रीमती एवलिन सुखू अपना पति वारिका वंदना दीपक किरण और शनेत अपना पिता स्टीफन ईशा और विश अपना ससुर 10 लड़कन अपना नाना और आजा स्वर्गीय माता और पिता सुखरानी रघु मंगरू और सुख नारायण मंगरू बेटा के आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए और मांग कर रहे थे, पिंजरे का पंछी तेरा दर्द ना जाने कोई। अमोर FM हर एक को कहते हैं आप सबको परिवार को सहन शक्ति मिले। हे फेस डायरेक्टर।

जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। Dertien minuten voor één geworden, luisteraars. Als u gaat lunchen, eet u smakelijk. मेरे बाद अभी आ जाता है प्रोग्राम को टेक ओवर कर लेने के लिए भाई राम नथी जी। दी साल है दमिदा उम्र पर शायन में दो ओवर को कोलेगास स्ट्रक्यस नाम है। साथ किसी के कोई कब आता है, साथ किसी के कौन जाए।

संगीत और संगीत के दुनिया के दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। आप सब कैसे हैं? आज फिर से आया हूं आप सबको खिदमत करने के लिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब आप कबूल करें। सुबह के कार्यक्रम आप सुने मेरी प्यारी बहना बे अवतार जी बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ आज मंगलवार के सुबह के प्रोग्राम आप तक नशर की है। 9 मिनट बाकी हैं डेढ़ बजने में। Kantoor is vandaag wederom voor u allen geopend tot 5 uur. Voor alle info bellen op kantoor 010-244-0929. En voor WhatsApp dat u dagelijks ons groet. En uw mooie comments. Onze websitenummer is 0617 11 71 30.

साथियों, आज ये प्रोग्राम में कुछ बेहतरीन से बेहतरीन गाने आपके लिए हमने चुने हैं। और आप सब कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हाल है ज़िंदगी में? तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक है ज़िंदगी में? आज दिल से दुआ देने के मन तुझे हैं, तो हमेशा खुश रहे, कोई परेशानी तुझे छू ना पाए, कोई तकलीफ तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए, ये होंठ तुम्हारे हमेशा मुस्कुराते रहे। छोटी सी जिंदगी है यारो, हर बात में खुश रहो, अपने आज में खुश रहो। और जब आप हैं तो हम हैं, और आज भी आप हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आज हमारे साथ दे रहे हैं। तो आप सबको हम ले चलेंगे जहां आप हमारे साथ चलेंगे, और हसीन वादियों में कुछ बेहतरीन से बेहतरीन गाने सुनेंगे, कुछ आपका सुनेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे। The power of love, amor FM.

शानदार खूबसूरत गीत आप सुने, दिल में हो तुम और दिल में हमेशा तुम हो, तुम्हें कैसे मैं दिल से निकालूं, तू हमेशा दिल में है। और आज ये गीत स्पेशली आप सुनने वालों के लिए पेश की गई है। साथियों, मौसम सुहाना है, मौसम से हम क्या शिकायत करें, धूप निकले हैं और धूप में आप हैं, धूप में हम हैं, तो खुली वादियों में महके हुए फिजाओं में मौसम के ऊपर ये गीत आधारित है हमारे सुनने वाले। तो आप लोग आज भी हमारे करीब है और देखते हैं हमारे एपर्स हमारे साथ है, भाई महेंद्र राम प्रसाद कैसे हैं, जीवन में सब ठीक ठाक हैं? आप आए तो बाहर आए और आपको भी हम दिल से याद करते हैं। तो भाई महेंद्र, आपको खुरुचस और राम राम आपको करते हैं। और देखते हैं इस वक्त के साथ में प्रोग्राम भी बड़ी प्यार के साथ में सुनते हैं। और सुरेश सुमेर, भाई सुरेश कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? तो भाई सुरेश, आपको भी हम दिल से आज याद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। तो अच्छा लगा कि भाई सुनील सुमेर भी प्रोग्राम से वाकिफ है। तो साथियों, आज गीत जो है, तो मैंने कहा ये गीत मौसम के ऊपर आधारित हैं। और आज सनम, आजा सनम मधुर चांदनी में हम आए, और जब मधुर चांदनी में है तो गीत को सुना देना चाहिए। हमेशा कहते हैं नए पुराने का संगम जब होता है तो इसका अंजाम ये होता है। The power of love, Amor FM.

मेरे साजन मुझे ले चल तू आमोर के पास, जहां हजारों लोग यानी कि पूरा मनोरंजन प्राप्त करते हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम और वीरानों में तुम। तो साथियों, आज का ये प्रोग्राम मंगलवार है, मंगलवार की ये सुबह, ये दोपहर के प्रोग्राम से आप वाकिफ हैं और हमारे लोग जो बड़ी प्यार के साथ में प्रोग्राम सुनते हैं। इस वक्त कमोवैन में ऐतकैक में वहाँ पर मेरा मित्र भाई रॉय हरंगी बड़ी प्यार के साथ में प्रोग्राम सुनते हैं। कहते हैं भाई राम आप आए तो बाहर आए और बड़े स्क्रीन पर मैं आपकी आवाज़ कमोवैन में ऐतकैक में सुन रहा हूं। तो भाई रॉय ये बहुत खुशी की बात है कि आप वहां पर रेडियो ऑन किए हैं और इस वक्त के साथ में आपको मैं बताता चलूं कि वहां पर करीब यानी कि 5:05 का सुबह है और भाई रॉय घर पर है, कॉफ़ी चाय पानी के साथ बैठे हैं। तो भाई रॉय इंजॉय आप करें ऐतकैक में और आप अपना नाश्ता करें। यहाँ पर तो हम लोग दोपहर के बाद करीला। तो भाई रॉय बहुत अच्छा लगा कि आप उस तरफ हैं और प्रोग्राम से जुड़े हैं। तो आज ये कार्यक्रम आप तमाम सुनने वालों के लिए पेश करते हुए देखते हैं हमारे एप्पर्स आज हमारे साथ हैं और आपको बहुत बहुत प्यार बताते हैं शुभकामना के साथ में। भैया बंदगी साहब आपको करते हैं। भैया गोविंद मित्रा सिंह स्पाइकर ने समय है, तो भैया गोविंद मित्रा सिंह आपको भी बहुत बहुत प्यार बताते हैं और आप बात करते हैं कि भाई अब वक्त आ गया है कि हमें तैन में तरतरकारी को लगाना चाहिए, अपना फ्रेश तरतरकारी लगाओ तो खाने में मजा भरपूर मिलेगा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, भाई रॉय आपको इशारा आपकी ओर है।

वाकई तुमसे मिलके ऐसा लगा तुम आए तो बहार आए। अमोर एफएम का ये कार्यक्रम है दोस्तों भाई बहनों, 18 मिनट बाकी हैं 2 बजने में और आप बड़ी प्यार के साथ में हमेशा आज भी आप रेडियो के करीब में हैं। जितने भी लोग नौकरी पर हैं या कुछ लोग इस वक्त घर पर हैं, कुछ बच्चे भी फकांसी से हैं, उन तमाम को हम स्वागत करते हैं, उन तमाम को वेलकम करते हैं कि आप हैं तो हम हैं। और इस वक्त के साथ में प्रोग्राम भी बड़ी प्यार के साथ में फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं हमारे एपर्स साथ हैं और जब जब हम आते हैं तो एपर्स यानी कि बड़े संख्या में बड़े तादाद में ये लोग आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ और प्रोग्राम इस वक्त के साथ में अविनाश प्रोग्राम सुन रहे हैं और हाँ अविनाश दुकालू हुई मेदख सोएक हाँ हाँ हाँ हाँ नंबर फन अरिजीत सिंह और दत्त दत्त खाओ सीकर दून एंड नंबर इस बस्तम फॉर ये फ्रेंडिन हाँ प्रीमा एंड अविनाश ik ga mijn best doen en blijf afgestemd op Amor FM. En mevrouw Nel is vandaag wederom paraat met ons. Mevrouw Nel, sab theek thaak? Kaise hain aap? Aur achha laga ki aap hamare saath hain. To chale program mein geet jo aap logon ke liye maine nikale hain. And the number fun Arijit Singh ka ek strax avdraye. Khuli vaadiyon mein aapko le chale. Gaana kuch hatke hai. हवा हवा आए हवा

हाँ ये हुई ना वाह, हवा हवा ऐ हवा, बस उसका पता तो मुझे दे, हाँ उसका पता हमें दे, और उनसे मैं मिलूंगा और बातें करूंगा दिल खोल के, अमोर के बातें कर

कहते हैं तुझे याद ना करूं तो बेचैन सा हो जाते हैं। Really? तुझे याद ना करूं तो बेचैन सा हो जाते हैं। पता नहीं जिंदगी सांसों से चलता है या तेरे यादों से। अब तू ही बता, बेपनाह प्यार है।

साथियों, आप जितने भी ऐप पर से दिखते हैं हमारा लाइन यानी कि ऐप पर पूरा के पूरा भरा हुआ है। इस ऐप पर जंग गिवाओ, वहां रखते हैं रकलाम। रकलाम के बाद में विचार मंथन नामक प्रोग्राम अभी चलेगा, तो फिर उसके बाद में आज याद रहे प्रोग्राम भी, भोजन के समय पर चटनी ये भी रहेगा। और आप सबको पता है कि सुरीनाम में चिकन गुनिया ये मस्कीटा काफी लोगों को तंग किए हुए है, और इतने सारे लोग बीमार है, इतने सारे लोग जो इसका घायल हुए है, ये मस्कीटा चिकन गुनिया से घायल हुए है। पता लगा है कि एक फक्सेन आ गया है। प्रोग्राम आप फॉलो करते

0: साथियों, आज ये प्रोग्राम में हम दोबारा आ गए हैं और आपके सेवा में, क्योंकि आपको सेवा करना मेरा धर्म है और आप हैं तो हम हैं, आप आए तो बाहर आए। और इसी अंदाज में आज मंगलवार के कार्यक्रम आपके सेवा में पेश करते हैं और हम अपने तमाम सुनने वालों को मौका भी देते हैं कि आप अगर कहीं पर है, कुछ हमें बताना चाहते हैं, आप परिवार के साथ में फकांसी से है, आप इंजॉय कर रहे हैं, मौसम सुहाना है, धूप निकले हैं, तो आप हमें तार करें या ऐप पठाएं और हम अपने एपरस्कोप से लेकर 3 बजे तक भरपूर सेवा करेंगे। तो साथियों, आज हम आपको ऐसा करें कि जो गीत हम प्लेयर पर रखें, ये गीत आपके नाम कर सकते हैं, नथुला कौन सा एपर्स डिजाइन मसाल ऑफ द ऐप, तो आपको ये मौका भी देते हैं कि आप लाइफ एंड बेल करें 03-24-05-0 पर कुछ आपका सुनेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे। और हम गीत जो इस वक्त प्लेयर पर लगाए हैं, जुबिन नौटियाल और श्रिया घोषाल है, इन दोनों की आवाज में ये गीत हम आपके लिए पेश करेंगे।
1: समंदर में किनारा तू,
0: आपके शहर में आ रहे हैं जुबिन नौटियाल।

0: है ना? तो मुस्की मार के कहते हैं वाकई में अतिथि के सेवा करो। रॉय एंड आशा बड़ी प्यार के साथ में अपने तमाम फैंस को हेलो करते हैं। और भाई रॉय हरंगी अभी तक सुन रहे हैं, कहते तूने बोला अविद क्या पर कमोवेना हंसू होना चाहिए। भाई रॉय कमोवेना हंसू, हाँ हाँ आपको नाज है मेरी हंसू और कमोवेना
1: फरहाद हूँ मैं।
0: इस वक्त के साथ में हरी गुरदिन और शीला दोनों साथ प्रोग्राम सुनते हैं। हरी एंड शीला आप दोनों को हम

साथियों, आज ये प्रोग्राम में ये गीत स्पेशली आपके लिए पेश की गई नई कम्युनिटन ओफर ट्वे लाइव एंड डायरेक्ट आपके साथ हूँ और आप उस तरफ हमारे साथ हैं। तो कल हमने प्रोग्राम के दौरान में आपको बताएं कि एक क्रूज़स्केप, ये क्रूज़स्केप में काफ़ी लोग बीमार पड़े हैं और 3 लोगों का मृत्यु हो गए हैं। ये छूत के बीमारी लोगों पर हुए हैं और हांता फीरस ये क्रूज़स्केप में लोग 3 लोगों का मृत्यु हो गए, लोग बीमार हैं और अब पता चला है कि बताया जा रहा है कि इंसान को ये छूत के बीमारी एक दूसरे को फैलाए हैं, क्योंकि ये बीमारी इंसान के ऊपर अब समंदर में है। लोग ये क्रूज़स्केप में हैं और करे तो करे क्या भाई, अब लोग बीमार पड़ते हैं और ये हांता फीरस इंसान के ऊपर ये फीरस पकड़ सकता है। तो अब पता लगा है कि 7 लोग इस वक्त ये क्रूज़स्केप में बीमार पड़े हैं। ये लोग को क्वारंटाइन में रखा गया है, पर अब कितने लोग ये लोग वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। लोगों को जो लोग मरे हैं वो लोग को तो उस क्रूज़स्केप से निकाला गया है, और कितने लोग हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और कितने लोग अभी तक बीमार है ये पता नहीं है। पर ये क्रूज़स्केप अब कहीं आन मेरा नहीं कर सकते, कोई देश ये

क्रूजकेप को आन मेयर करने के इजाजत नहीं देते हैं। तो ये समंदर में अब यानी कि समंदर में ये है और मामला क्या होगा, कैसे होगा, ये अभी तक पता नहीं है। साथियों आज प्रोग्राम देखते हैं तो प्रोग्राम बड़ी प्यार के साथ में प्रोग्राम फॉलो करते हैं और मुफ्रा नेल उदयराज सिंह हमारे साथ है और एप्पर्स के हम जिक्र करते हैं तो महेंद्र एंड मीना सुक्खू को बहुत बहुत प्यार करते हैं, बता याद करते हैं मुफ्रा हिस्ला यांकी। मुफ्रा हिस्ला यांकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। एंड फनाख इज मुफ्रा इरेन अब्दुल ओक फन पढ़ते मुफ्रा इरेन अब्दुल बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, हर दिन हमारे साथ रहते हैं और आज अच्छा लगा कि आज दोबारा आप हमारे साथ हैं। और ऐप के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रोग्राम सुनते रहें। अम्स्टरडम में सानु ज्वाला प्रसाद है एंड एक हत बलोफ्त ओम अन्यमर फन फन अरिजीत सिंह अफ्त स्पेलन एंड या एंड दैट इज इखला दुकालू नामस अविनाश दुकालू अन्यमर फन अरिजीत सिंह नाउ हेल स्पेशल ओक फॉर योर लिबस्टेप Power of Love, Amor FM.

0: यस, ये हुई ना बात दोस्तों भाई ने फिर 3:09 प्रोग्राम जो आप तमाम सुनने वालों के लिए पेश की जा रही है। और आपको जरूर से बता दे भैया, रोहतरम में अभी तक कैरमस लगे हैं और अगर आप कैरमस में घूमना चाहते हैं तो आप जरूर से जाइए। मौसम सुहाना है, मौसम रंगीन है और कैरमस हाँ भाई बोले ऊपर जाइला झूले तो झूलना चाहिए, खूब झूलो, दिल लगाकर झूलो। साथियों आज हम आपको ले चले गीत जो प्लेयर पर है, ये गीत के लिए आप भी हमें तार कर सकते हैं। बताइए कहाँ से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं एंड आप हमें कॉल करते हैं तो 9:03:00 पर, और ऐसे हमारे एपर्स हमारे साथ हैं तो कहते हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से ये दिल को चुराना। तो आप कहीं आइसक्रीम खाते हैं या और कुछ खाते हैं तो एक दूसरे से ज़रूर से कहिए। मैंने शिवराज भत्तू प्रोग्राम भी फॉलो करते हैं। मैंने शिवराज भत्तू कैसे हैं, सब ठीक ठाक इन हुई है मेरा
1: राम राम भाई।
0: मुफरा हिस्सा यहाँ की आइस खाई के मन करे हैं काबुल जा की ने
1: ब्लूमकोल
0: अब ब्लूम कोल के साथ कौन कैसे बनाइयो
1: मसाला प्याज लहसुन मसाला तेल और नमक
0: और कौन सी झूर मछली यही तो कॉम्बिनेशन पहला बार सुनीला ब्लूम कोल आलू के साथ हम खैलीन है, ब्लूम कोल केचप के साथ खैलीन है, ब्लूम कोल मसाला में खैलीन है, पर ब्लूम कोल और झूर मछली ये तो बड़े लेकर ओके अच्छा तो एक हेल ब्लूम कोल बनाइयो
1: ना ना भाई
0: तो ओके ओके और भात से खाइयो क्या ओके
1: खाली बहुत खा पाया
0: ओके खाई के बनाओ जितना आप खाई सको है, अब महंगाई के जमाना है तो कमती सोच समझ के कि खाई के जब बनल है कुछ बच गए तो ओके चाहे बिहान भर दोन कर देवे के भी बसपार करो है और पानी बर्तन धोवे सब वो सब बसपार होवे है।
1: हाँ जी, या,
0: ओके और कैसे मौसम है दनहाख में मुफ्रा हिस्सा यहाँ की ओके ओके तो दुकान दूर है आपके घर से हम बोले दुकान दूर है आपके घर से
1: 3 मिनट
0: ओके तो थोड़ा बाहर टहल लियो भी थोड़ा घर से बाहर चाहे निकले के और अड़ोस पड़ोस वाले से अच्छा सत्कार चाहे रखे के ना
1: जी हाँ भाई हम लोग यहाँ पर जैसे खाली सुधार सब आदमी लोग
0: ओके
1: कफनी लोग इस सब है तो ज्यादा खाली दो तुर्को एक हमारे बगले में जो बस हमारे
0: ओके
1: हलो जैसे ये भाई बहन बाकी
0: ओके नौ ऐसे मौसम में जब तौन में बैठी है या एगो एगो वैक है जहाँ पर सब कोई बैठे तो एगो एगो का बोले है होरन वाला ऐस खाइयो तो बड़ी मोई लगे तो गला भी चाहे सी चलियो धीरे धीरे से जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना अच्छा
1: भी
0: बुक अच्छा देखिए बिचाई के बड़ी चिकनगुनिया है अच्छा अच्छा अच्छा नावेल अकबाल चिकनगुनिया के एगो यानी के फक्सैन आगे हैं प्रोखामा सुनियो तो हम लोग आज कुछ बतावे ओकर बारे में अच्छा ओके नाउ मुफरा हिस्सा यांती गीत तैयार है एकदम से रेडी है तो हम लोग अब ओके ड्राई करब और स्पेशल जकर जकर नाम आप ले लो है तो ओकर खर्तीन है और हम देखे हमारे ऐप पर एक आध जने और है तो उन लोगों के तरफ से भी हम धर देवे अच्छा मोई से ब्लूम कोल झूर मछली बना के खाइयो
1: जी हाँ
0: हम बोले लुटपुटे बनाइए हो
1: जोड़े
0: ना अच्छा अच्छा ठीक बात है।
1: हो
0: तो ओके
1: अच्छा भाई अच्छा
0: गाना आवे है तो देन हाँख में मोरोई हिस्ला यांग की विचार करील है कि ब्लूम कोल मसाला में और झूर मछरी तीता तीता लुटपुटे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना ये दिल को चुराना।

0: खुदा जाने क्या वास्ता है आपसे, खुदा जाने क्या वास्ता है आपसे, हजारों अपने हैं, हजारों अपने हैं, मगर याद सिर्फ तुम आते हो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से ये दिल को चुराना। साथियों, आज आप साथ हैं, क्या खूब है, क्या अच्छा लगता है, और आपको दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इतनी तादाद में आज अमोर एफएम के प्रोग्राम सुन रहे हैं, फॉलो करते हैं। एक ही हैं जो हजारों को सेवा करते हैं, और फ्लेफोलांत में भी लोग प्रोग्राम सुनते हैं। हाँ, फ्लेफोलांत में भी भैया रेडियो पर प्रोग्राम सुनते हैं, भाई भैयन जगेसर। भैयन कहते हैं कि मैं गाड़ी में होकर और लेलिस्तात में प्रोग्राम सुन रहा हूँ, सिर्फ अमोर एफएम लेलिस्तात में गाड़ी में सुनाई देता है। भाई बहनों, तो देखिए ये कमाल है ना। तो अब पता लगा है कि बड़ी दुख की बात है, जहां आतिशबाजी बनते हैं, फ्यूरवर्क जो शहर में बनते हैं, आपको बता दें कि 60% फ्रॉम द फ्यूरवर्क सीर पकेट एंड बम्बूल आते हैं शीना में। तो शीना के एक प्रोफेंसी हुनान में भाई बड़ी धमाका भइल है, बड़ी गजब के बाद भइल है कि वहां पर एक एक्सप्लोसिव भइल है, धमाका भइल है, और कुल मिलाकर 21 लोग का मृत्यु हुए है। रैम ट्विंतख दोदन एंड सस्तख वोंदन बैन एक्सप्लोसिव इन फ्यूरवर्क फैब्रिक शीना बैन एक्सप्लोसिव इन एन फ्यूरवर्क फैब्रिक इन द शिनेस प्रोफेंसी हुनान सैन सेकर 21 मैंसन ओम हेट लेवन गकोमन रैम 60 मैंसन राक्तन खवोंत। ये बात हम लोग को अखबार बताए हैं आज मंगलवार को, जहां हुनान में ये प्रोफेंसी में फ्यूरवर्क फैब्रिक है, तो वहां पर कैसे ये धमाका भइल है। आप जानो है ना कि ये क्रोइट और ये सब चीज जहां बनते हैं तो बड़ी बड़ी नाजुक होते हैं कि यहां अचानक आग लग गया और धमाका हो सकता है। तो यही ऐसे बात हुआ है कि फ्यूरवर्क फैब्रिक जो पूरा साल फ्यूरवर्क बनते हैं, और जो फ्यूरवर्क हम साल के अंत में दागते हैं, सिर पकेट है, बम्बूल भइल है, तो अब हुनान में ऐसा हुआ है, धमाका भइल है। भाई बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर अब शीना सरकार लोगों को भेजे हैं यहाँ पर लोगों को मदद देने के लिए, पर यह घटना घटी है, इसके बारे में आज अखबार हम लोग को बताई है। तो साथियों, अब प्रोग्राम के जरिए गीत जो हमने निकाले हैं, ये गीत स्पेशली आपके लिए, जिमी एंड सांद्रा अक्कलालाराम आज हमारे साथ है, जिमी डंकीवेल एंड सांद्रा डंकीवेल की आज आप लोग हमारे साथ हैं, प्रोग्राम फॉलो करते हैं, और भैया मुकेश भी प्रोग्राम सुनते हैं। खुई मेदख एक खनित फनी मोय लिचस खुद बेसख एक लोइस्तर और een hoogte ongeveer 25 meter hoogte kraanmachine. Oh, denk je, bhaiya? Wie heeft deze liedje gezongen, bhai AUB? Aha, dhire dhire se mere zindagi mein aana, dhire dhire ye dil ko churana. To bhaiya Mukesh 25 meter ki unchai par kraan mein hai, काम करते हैं और क्रान मशीनिस्ट हैं। तो भैया मुकेश, क्या बात है कि आप ऊपर 25 मीटर के ऊंचाई पर पूरा नजारा आप देखते हैं, और आप बगल में अमोर एफएम रेडियो धरे, क्या बात है, क्या अंदाज है। हम तो नीचे नीचे सुनते हैं, पर भाई मुकेश अमोर एफएम बस आसमान में सुनते हैं, तो क्या बात है। तो भाई बहनों, चलिए अब गीत भी, भाई मुकेश ये गीत भी कुछ हटके है, देखा तुमको।
1: ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या।
0: The songs belongs to you. With lots of love, the power of love, amor,

0: साथियों, अन मिनट ओवर हाफ थ्री हो चला है, यानी कि ढाई बज के एक मिनट गुजर रहे हैं और आप उस तरफ हमारे साथ हैं और बड़ी प्यार के साथ में आप प्रोग्राम फॉलो करते हैं। मैंने कहा फ्ली फोलांत में लोग प्रोग्राम सुनते, तो फ्ली फोलांत से होते हुए इस वक्त अम्स्टरडम में हमारा तब डीजे नाल्डो बुधन हमारे साथ है। बोले अम्स्टरडम में मौसम एकदम परफेक्ट है, एकदम जकास वाला मौसम है, और बोले जब जकास वाला मौसम और गाना भी जकास वाला है तो दोनों साथ मिला ले तो बोले भाई राम आप इंजॉय कर रहे हैं भरपूर। तो भाई नाल्डो बुधन थैंक यू कि आप हमारे साथ हैं। और सांदाम में प्रोग्राम भी सुना जाते हैं भाई कंचन गुलराज जो इस वक्त प्रोग्राम से जुड़े हैं, आपको भी याद करते हैं। और बहना सानू ज्वाला प्रसाद भी प्रोग्राम से जुड़े हैं। तो आप लोग जब इतनी तादाद में आमस्टरडाम में हैं तो चलिए गीत आपके लिए। अब प्यार के बाद जब हुए हैं तो प्यार तो आप बेहद करते हैं अमोर एफएम से, ये इसमें कोई शक नहीं है, आप अमोर एफएम से बेहद प्यार करते हैं, प्यार करना चाहिए। इतना न मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। ये कार्यक्रम आप तमाम सुनने वालों के लिए पेश की जा रही है। इन खुदमिदाख
1: खुदमिदाख काका जी, राम राम और नमस्ते जी।
0: नमस्ते, नमस्कार, कैसे बांटो आप?
1: हम बढ़िया, अनीता भगवान जी।
0: अच्छा अनीता जी, कैसे है और आपके शहर में क्या हो रहा?
1: हमारे शहर में बैसकिर चलावे सबन बाकी सबन एक न बचे तो आनंद कर दिया बैसकिर कभी। अच्छा। ले रखे थोड़ा सा कभी बैसकिर खती है।
0: हाँ बोले सबसे गाड़ी चलाओ तो पहले रही बोई चाहिए रही क्या, रही बोई हाँ। नहीं तो गाड़ी मत चलाओ
1: ना, गाड़ी ना चलाओ तो बाइसकिल अच्छा लिंक लाइक चलावे ना मैं चलावे।
0: अब बाइसकिल पे कैसे अब रही बोई सुकल लेवल जाए
1: तो ओके सीखे के मैं से तो जब बोई से पहले सीख तो चले
0: तो जाने तो जाने पहले सब कोई बोला था खा इयर्स लेयर ओपन ऑल द फीट्स। अनीता हम पहले बाइसिकल चलाई नहीं है, वहाँ बांती न रहा खाली फैलक रहा
1: और तो
0: कैसे चले तो लिंग सड़क पहले तू जाने गरीबताई के तहत रहा तो ओमा बांती न रहा, अब तो बाइसिकल बन गई ओमा बांती तक खूब गदगद बैठ के चलाओ, पहले खाली फैलक पर स्क्रोपो वाला रास्ता पर हमने चलावत रही लेन। अनीता तू कैसे सीखले बाइसिकल चलावे के?
1: हम सरनांग में सीखली बात थी।
0: क्या बोलो?
1: सरनांग में सीखली बात
0: थी। सरनांग में सीखले है। हाँ। अच्छा, और छोटा बाइसिकल के बड़का बाइसिकल पर?
1: बड़का बाइसिकल हमारे बाप के कम कर तो आके बाइसिकल या चुराई के बाइसिकल।
0: ओ बाप रे बाप, तो चोरी करके सीख ले बाइसिकल चलावे।
1: हाँ हाँ हाँ, चुप्पे से अकाई बाबा में लगावट एक अच्छा पड़
0: और कई दफे गिल्ले बाइसिकल लेके
1: ना गिरली हम ना गिर ली बाती हम पकड़ के हम लोग के रहा ऐसे को पोर्ट लोहा वाली तब ओके पकड़ के चलावत रही।
0: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ, चुप्पे से अच्छा ना बताइए।
0: अच्छा भले चुप्पे से कर ले है कि अब सीख गए बाइसिकल चलावे के।
1: हाँ अब चलाए जैसे अब जैसे फिरारी चलाई ले बाइसिकल या
0: कैसे चलावे
1: जैसे फिरारी।
0: ओ जैसे फेरारी। अच्छा अच्छा
1: अच्छा
0: मतलब अनीता इतना मुझसे प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा।
1: अच्छा ना वही गाना तू धरे बड़ा गड़बड़ गाना धरे।
0: अरे सोच समझ के तू जाने तो बोले सौ सोनार के तो एक लोहार के।
1: अरे हम तो बती लकड़ियार के यार
0: या ना हम गनवा जाई धरे मोरा अनीता मोई से खनित कर एंजॉय कर।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: और तो शहर के मौसम बहुत प्यारा है।
1: अरे हाँ बट इसकी
0: तो गनवा भरपूर आप खाते धरी और हमारे जितना सुनने वाले
1: थोड़ी से बा और अलग के भी थोड़ी से बात जान प्राण का ढेर बा।
0: अच्छा ठीक है कमा हो गया
1: शुक्रिया।
0: ओके इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा।

माइंड ब्लोइंग। कहते हैं जो बदल जाए वो यार कैसा, जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा। लोग कहते हैं तुझे फिर प्यार हो जाएगा, लोग कहते हैं तुझे फिर प्यार हो जाएगा, पर जो हो जाए फिर से वो प्यार कैसा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। आज ये प्रोग्राम में नए फैंसी में ये गीत आपको हमने सुनाए। साथियों, ये कार्यक्रम आप सुनने वालों के लिए पेश है अमोर एफएम द पावर ऑफ लव, और उस तरफ आप हैं, आप हमें ज़रूर से बताइए। बहुत सारे लोग स्कैफनगंज जा रहे हैं और स्कैफनगंज के हवा खाने के लिए, तो बच्चों का छुट्टी है और इस वक्त 18 मिनट बाकी हैं 3 बजने में, तो आप इंजॉय करें। और संद्रा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हुई मेदा खमने राम फैन अचंद खनित फन लिचस फैन मेदा खुरुच संद्रा संद्रा संद्रा संद्रा दंग वाल दचे खनित फन अमोर एफ एम एन मने रजेंद्र कुमार इस ओकानत लोस्त्र एन मने रजेंद्र कुमार अथ होपलित इस Fall op aan het genieten van Amor FM. Zelf in Frankrijk worden wij geluisterd en daar is onze lieve Lalita en Steven. Lalita ji kehte hain Frankrijk mein mausam ekdam excellent hai, ekdam jakas wala mausam hai, sonakh and warm. And Lalita apne Steven ke saath mein enjoy kar rahe hain and Shahid and Sharda. To chale, jab mausam suhana hai na sirf Netherlands mein par mausam Frankreich mein bhi suhana hai, to gana ho jana chahiye, mausam ki izazat hai. Kunal Ganjawala and Shreya Ghoshal, ye hui ne baat.

0: मौसम की इजाजत है, किसने तुम्हें रोका है, जो करना है अभी कर ले, आज कर ले, इस वक्त कर ले, कल किसने देखा है, कल किसने जाना है। तो मौसम के ऊपर ये गीत आज हम आपको सुनाएं दोस्तों भाई। अभी ब्रेक की ओर चलेंगे, ब्रेक के बाद में विचार मंथन नामक प्रोग्राम हमारा कुलिक है, श्री पंडित दीपक जी ये प्रोग्राम आप तक नशर करेंगे, उसके बाद में हम आपसे मिलेंगे। और मैंने कहा कि सुरीनाम में चिकनगुनिया से काफ़ी लोग परेशान हैं, बोले करी तो करी क्या। तो दोस्तों भाई अब एगो फक्सेन आई गई है, और आज अभी 4 बजे के उपरांत रहेंगे शुरेरख चांदर महावीर। शुरेरख चांदर महावीर जो सुरीनाम आते जाते हैं, तो ये हमें बताएंगे कि भाई ये चिकनगुनिया मस्कीटा जो है तो पूरा सुरीनाम को यानी कि डमाडोल कर दिए हैं, पूरा सुरीनाम को डमाडोल कर दिए हैं। एन है खात ऑन्स फर्टेल या अतेसम फक्सें दी न्यू अपत मार्केस एन वार कहें फिर हु कहें एन या सेल्फ फ्राउन दी स्वंगर साइन दी हेफ्ट दी हेवन ओक हिल फेल लस्ट फन चिकनगुनिया। तो चलिए आज गीत आपके लिए हम निकाले हैं, और देखते हैं भाई राजन गोपाल दरहाख में प्रोग्राम सुनते हैं। अब ये भी देख लो, इसको सुन लो, जानी कहाँ गया मेरा दिल और जिगर। किसकी अदाओं पे ये बस फिदा हो गए, जानी कहाँ मेरा जिगर गया, किस पे फिदा हो गए। भाई चंदर क्या ख्याल है,
1: जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही

0: स्पेस वालों, आप ही का मंत्री अमोर एफएम है और आइए आज पुनः आप सबके पास आए हैं अमोर एफएम द्वारा आप ही का कार्यक्रम विचार मंथन लेकर, एक से एक गंभीर से गंभीर, सुंदर से सुंदर टॉपिक लेकर, विषय लेकर आप सबके पास आते रहते हैं हम सब। और आज पुनः हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित है हमारे ही सामने हमारा ज्येष्ठ भ्राता, बहुत ही मान्यवर आचार्य पंडित वरुण शर्मा जी, जिनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। भाई फहार्थ वेलकम,
1: धन्यवाद,
0: स्वागतम।
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
0: भाई। जहाँ तक हम लोग सोचिला वह बदतनी ओफर द पंच कोश, बहुत बलंगरायक, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, द फाइव कैरन एनर्जी वारोइट वे ओपगबाउट साइन वत वे इन ओन्स हैब बहुतों ओन्स हैब जोन हम लोग के अंखलक चलावे फिरावे है सब कुछ हम लोग के संग है करेगा। अन्नमय कोश है वो रोफर खहत की बुविस्त को होकर एनर्जेटिस को होकर बुविस्त नुतखा, dus echt ध्यान देवे कुछ हम लोग भोजन में लेला, हम लोग के जो वात पित कफ हैगा ओके बलंसेर करे के साथ ही साथ ऊपर आप धीरे धीरे और भीतर गए लो, जहाँ पर आप बात धरलो फन यथा आहार तथा विचार हेफ्ती ओफर कनोफ्लो को खहत ओफर अय ओ खहत कि कम से कम मंदिरों में होवे लगल हैगा, ढेर मंदिर में होवे लगल हैगा, मार जितने दूर तलक एक हम लोग मंदिर में और प्रचार कर सकी कि अब कम से कम लहसुन प्याज रहित भोजन मंदिर में बने, ताकि हम लोग के जनता हम लोग के जो मंदिर बसु कर सकेगा उस अब हम खूब प्रेम से चखे के शुरू कर देवे कि बेगर लहसुन प्याज के कितना सुंदर भोजन है, कितना स्वादिष्ट भोजन है, कितना पौष्टिक भोजन हैगा। अलहुवेल ढेर जगह होवे लगल है दार साहिब ओक त्रोत्सोप, maar hoe verder we dit kunnen uitbreiden, hoe beter. Aan de ene kant, jahan par aap batave hai ki lehsun pyaaj rahit bhojan, heeft u aan de andere kant ook gelijk belicht ki ayurvedisch lehsun kitna belangrijk hum log khatin hai ga, hartvaten, bloedvaten khatin, en hum log gezondheidsgesteld khatin, immuunsysteem, sab kuch khatin, maar kaise ook nuttig karal jahe, daar heeft u ook over gehad. अयोग के इफेक्ट भी आप बताइए बैठे कितना बलंगरायक है, कैसे हम लोग खबराई कर सकेला बुखार उतारे खतीन एन नूमर ओप ओफर वित अय रोद अय हेफ्ती ओक खहत। एन दाना गस्प्रोक ओफर प्राणमय कोश, इट इज इफ वेर एन रिकैप फॉर द लुइस्टरार्स सो दैट्स वेर इफ बाय वन, इट इज वेर एन टाइटचे गेलेडे हम लोग के विल्सक्राफ्ट, जहां पर वात पीत कफ एक कंती अन्नमय कोश में बलंसेर करल जाए, तो इधर मनचित अहंकार के चाहे कंट्रोल में रखे के जो हम लोग के फैल है एंड दैट लाइक रिएक्शन, कैसे कौन चीज पे हम लोग के रिएक्शन

0: हमारे प्रिय सुनने वालों, आज ये प्रोग्राम में विचार मंथन नामक प्रोग्राम सुने और हम सबका मानेवर कोलेखा पंडित जी दीपक जी आपको ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाए हैं हम और एफएम के जरिए। साथियों, 14 मिनट बाकी हैं 4 बजने में। ये कार्यक्रम आप सभी सुनने वालों के लिए जो नशर की जा रही है और आप प्रोग्राम बड़ी प्यार के साथ में फॉलो कर रहे हैं, प्रोग्राम से आप जुड़े हैं, हर एक इन्फो के लिए आप कंतोर पर संपर्क करें, कंतोर पर आप संपर्क करें और कंतोर शाम 5 बजे तक आपके लिए खुला है। हर एक जानकारी मालूमात के लिए आप कंतोर पर वहाँ पर इन्फो ले सकते हैं 9324 09 29। और शाम में 5 बजे अयुत खान सखेंदा होगा, अयुत खान सखेंदा के बाद में भोजन के समय पर चटनी, और अभी 4 बजे यानी कि उसके उपरांत डॉक्टर चांदर महावीर, श्री रख चांदर महावीर से बातें करेंगे, चिकन गुनिया जो सुरीनाम में काफी लोगों को परेशान कर रखे हैं।
1: सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल।

0: मस्त मस्त
1: सखी लाल कलंदर मस्त मस्त
0: झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त

प्रोग्राम जैसे हम आपको बताए हैं साथियों, हम चलेंगे अब तो सुरीनाम में। काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशानी है, लोग यानी कि तरह कभी बारिश होता है, कभी सूखा ज़मीन पर जाते हैं, और अक्सर इन दिनों में काफ़ी लोग जो यहाँ से जाते हैं, अक्सर हम आते जाते हैं, आने वाले सोमवार फकांसी में भी हम जाएंगे, तो हमारा प्यारा सुरीनाम देश जहाँ हम सब इतना लगाव है, हम आते जाते हैं, हमारा परिवार वहाँ पर है, हमारा रिश्तेदार वहाँ पर है, और अब पता लगा है काफ़ी दिनों से लोग जाते हैं तो चिकनगुनिया का काफ़ी परेशानी कर रखे हैं। कितने लोग चिकनगुनिया मक्खी उन लोगों को यानी कि काटे हुए हैं, उनको छेद किए हैं, और काटने से काफ़ी परेशान लोग हुए हैं। कितने लोग बीमार पड़ गए, कितने लोग बीमार सुरीनाम से यहाँ नीदरलैंड में आए हैं, और उसके बारे में हम क्या कहें, मेरे पास तो जानकारी है कम, पर एक व्यक्ति जो इसके बारे में हमेशा आते जाते हैं वो हम लोगों को आज बताएंगे, और वो शख्स जो अक्सर सुरीनाम सालों सालों से आते जाते हैं, और वो हम लोगों को आज इसके बारे में और जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन आने वाले हैं।

साथियों, आज का ये प्रोग्राम आप सुनने वालों के लिए पेश की जा रही है और हमारे ऐप पर भी कुछ ऐप जो बचे थे तो वो ऐप हम देखते हैं कि हमारे लोग जो हैं तो एल्सा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अल मलू से प्रोग्राम सुनते हैं। मोई मिशिक क्लोसरोख एन फनाइट अतिस बोलिक इन अल मलू ख्रुचिस फन एल्सा एल्सा दंकिवल हेलमाल उट अल मलू दत ये ओ कानत लोइस्टर बेन नाउ ख्रुचिस फन उट स्टूडियो फन अमोर एफएम एन नामंस बॉयका अलगो विकास नथी जय देवान सिंह किशन Ragunath, nou, goeiemiddag, goeiemiddag allemaal. Dit zijn allemaal vrienden en vandaag is onze vriend collega Doost Sherwin Badal jarig. Kunt u een leuke plaatje voor draaien voor hem? Sherwin Badal, van harte gefeliciteerd. En ja, Sherwin is vandaag jarig, dus biggie party. Het wordt een feest gevierd en de felicitatie namens Boyke, Algo, Vikash Nathi, Jay, Devan Singh en Kishan Ragunath en ja, Shailesh en Shaike Maiko, de hele team, die staat klaar. En ja, een mooie verjaardag, Sherwin Badal, namens de crew van Amor FM ook de felicitatie. Nou, maak een mooie dag van en mooie avond. En Raj en Maaike zijn ook van de partij. Ze zijn ergens in de auto, maar ze luisteren altijd naar Amor FM. De enige echte, the power of love, Amor FM. Toe chale aaj ye program mein, jab Sherwin ka janamdin hai, aur Maaike bhi program sunte hain, Raj bhi saath mein hai, program se jure hain, to आज ये प्रोग्राम में हम ये लोग को खुश करते हैं और प्रोग्राम में सुनवाते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार बताते हुए आज ये ख़ास प्रोग्राम जो पेश की जा रही है तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी है। आम्स्टरडम में वहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम बड़ी प्यार के साथ में। क्रिस राम प्रसाद हमारा टॉप दम बोर्तर जो प्रोग्राम सुनते हैं तो भाई क्रिस राम प्रसाद आपको भी हम बहुत बहुत प्यार बताते हैं और आप इस वक्त प्रोग्राम से जुड़े हैं तो शुक्रिया शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। तो आपको भी हम यहाँ से स्टूडियो से बहुत बहुत शुभकामना आपको देते हैं। तो गीत जो प्रोग्राम में हम चलाते हैं तो लीजिए ये गीत आज प्रोग्राम में। 9:05 अभी 5 बजे अयोध्या अजेंडा, फिर उसके बाद में न्यूज एंड भोजन के समय पर चटनी।

0: साथ ही आज ये प्रोग्राम में ये दिल ना होता बेचारा तो काहे को ये आवारा होता। आज ये प्रोग्राम में अपने तमाम सुनने वालों के लिए हम प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाए हैं। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अवित खांग सखेंदा होगा, उसके बाद में न्यूज होगा, अवित सुरीनाम, और उसके बाद में आज खाना में क्या मिलेगा, क्या बनेगा, कौन सी खाना बनेगा, ये सब बताने की आप जरूर से कोशिश करें।
1: एक मैं और एक
0: तू, दोनों जब साथ मिल जाएं तो रसोई घर में खाना क्या बनेगा, चटपटा खाना बनेगा भाई।
1: दोनों मिले इस तरह और जो
0: मिस्टर सर्विन बदल, आलिया मातिस इज रेडी।

0: वाह वाह वाह वाह वा भाई रूपराल आज ये प्रोग्राम में चलबो के नाही, अरे चलबो के नाही। तो साथियों आज ये प्रोग्राम आप तमाम सुनने वालों के लिए भोजन भोजन के समय पर चटनी और जब लाल लाल ओठवा से चुवेला ये पसीनवा
1: पसीने
0: ये हुई ना बात। प्रदीप चैत

0: आहा तेरा मीठा मीठा बोलियां करेजा छुवेला, जब तू खाना बनावत है तो भी करेजा छुवेला, क्योंकि आपके मुलायम हाथों का खाना क्या बात है। प्रोग्राम में दोस्त भाई बहनों, आप ये चटनी के बाद में भोजन के समय पर चटनी आपको हम ले चले और सुनवाते हैं। अब कैसे बिगर दूल्हा दुल्हन के शादी होए,
1: लगन बिन कैसे विवाह होई, लगन बिन कैसे विवाह,
0: पंडित को बुलाकर लगन करवाते हैं, तभी शुभ मुहूर्त के साथ विवाह होए।

The master of the chutney, Mr. Devraj, आज ये प्रोग्राम में लगन बिना कैसे विवाह होई। साथियों, आज ये प्रोग्राम में त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हम हैं, जहां हमेशा लोग चटनी के बाद जब होते हैं तो बैठक गाना चटनी दोनों साथ में मिला लेते हैं। तो आज प्रोग्राम में एक नाम जो हर लबों पर वायलर होते हैं, वो नाम रसिका दीनदयाल, द क्वीन ऑफ चटनी, रसिका दीनदयाल।

Straight from the sugar country, the queen of chutney, Rasika Dindial. भोजन के समय पर चटनी, ये प्रोग्राम काफी मायने लोग रखते हैं और खाना भी बड़ी प्यार के साथ में बनाते हैं. तो अब इसी बार एक और तप्पर को शामिल करते हैं जिसका नाम है श्याम बोधराम. We gonna mash up the thing.

छतिया बस मोरा सजन छतिया से मारे साथियों आज ये प्रोग्राम में बस आप सुने इट्स अ वेस्ट इंडीज स्टाइल भोजन के समय पर चटनी भौजी बनावे रोटी कोई आलू भरी रोटी तो कोई दाल भरी पर गयाना में या त्रिनिदाद में वहां पर प्लक प्लक रोटी. Now, we're gonna make some pluck.

0: We're gonna mash up the food. We're gonna mash up the pluck, clap, clap roti. मिस्टर रकीस यनकरन के बाद साथियों उस तरफ आपका खाना तैयार हो रहे हैं और इस तरफ अमोर एफएम आपको चटनी दे रहे हैं, तो साथियों दोनों मिला ली तो देखिए उसका मज़ा कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल सुरीनाम के बगल में मैंने खाना कि गयाना में भी लोग प्रोग्राम बड़ी प्यार के साथ फॉलो करते हैं, तो चलिए गयाना के ये तपर आज प्रोग्राम में।
1: Country, its name is Guyana.
0: Of course, we love Guyana.

Really, she love her country, lovely country, Guyana. And Miss Mona Ramsiu. साथियों, आज ये प्रोग्राम आप तमाम सुनने वालों के लिए बड़ी प्यार के साथ में पेश है और सुरीनाम में भी लोग बड़ी प्यार के साथ में प्रोग्राम फॉलो करते हैं, प्रोग्राम से भरपूर मज़ा लेते हैं। वहाँ पर लोग इस वक्त लंच पर है और हम यहाँ शाम के खाना की बात करते हैं, तो प्रोग्राम में लाते हैं द शाइनिंग बॉय मिस्टर शिवम राजाराम। छोड़ के शहरिया, चल तो के ले चलब, करिया करिया पानी कोला करी।

द शाइनिंग स्टार शिवम शिवम राजाराम जब खाना तैयार होने को आए हैं तो हो प्रीतम प्यारे कहाँ बसल हो तू आजा साथ मिलके खाना को ग्रहण करे और आज ये प्रोग्राम में ये गीत स्पेशल तौर पर आपके लिए

ये हुई ना बात, ओपी तम प्यारे तू कहाँ बसल है, बस बस अपनी नगरिया बताए जा। प्रोग्राम भोजन, भोजन के समय पर चटनी, और ये प्रोग्राम अब आहिस्ता आहिस्ता खात्मा की ओर हम ले जाएंगे, और आप बड़ी प्यार के साथ में प्रोग्राम सुने। सुरीनाम आपसे इजाजत लेते हैं, आप सब खाना बनाते रहे, और अमोर एफएम का ये प्रोग्राम जो खास है और आपको खास बना देते हैं, तो आज ये प्रोग्राम आप सुने, साथ दिए, इस बात के लिए धन्यवाद। मिलेंगे तो आने वाले प्रोग्राम में, रात के सपना सूते ना देवे। अब कैसे सूतेंगे, खाना खाने का वक्त आ गया, तो चले मिलके खाना को खाएं।

सुनी वालों, आप लोगों को मालूम है, फिर भी हम आपको याद दिलाते हैं कि वही देता वही लेता, वही देता वही लेता, उसी का है संसार, एक आता और एक जाता, ये जग का है व्यवहार। हमारे दुखी प्राणियों भाई और बहनों, अमोर एफएम नीदलाम से आप सुनने जा रहे हैं नव परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार अर्थात मौत की खबर।

65 बरस की आयु में दिनसदाग 28 अप्रैल के दिन में 1:28 पर देनहाग पीटर लंगनदेग स्रात की रहने वाली श्रीमती मतिल्दा गौरीचरण, आप इन्हें जीवित में सेल्फी के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। नीखन 69 बरस की आयु में कल सोमवार मई के 4 की सुबह में 3:30 हालफियर रोटरडम की रहने वाली सीता बंधु की मृत्यु हो गई है। 67 बरस की आयु में 7 मई के सवेरे में 8:35 पर देनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू राज के नाम से आप जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। नीखन 79 की आयु में बुधवार नीखन 20 अप्रैल सुबह में 6 रोटरडम खेसिंगलान 802 की रहने वाली श्रीमती धर्मवती सुकार बिहारी मुन्ना के नाम से आप जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। सैफ ने तख्तक 87 की आयु में आज मंगलवार मई के 5 सुबह में 5:30 देनहाग की रहने वाली माता श्री धनपालिया तुलसी सरजू इंदर के नाम से आप जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। नीखनन 59 की आयु में कल सोमवार 4 की रात्रि में 8:15 स्पेकरिश का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी सुनील के नाम से आप जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। अख्तर नीखन तक 98 की आयु में सोमदाह 3 की रात्रि में 10:30 रोटरडम बेफरवाट रेनोवन सिंगल की रहने वाली माता श्री मतिल्दा लखपतिया बासदेव सिंह महावीर पांडे की मृत्यु हो गई है। नीखन तक 92 की आयु में मानदाग सेफन 20 अप्रैल के शाम में 3:45 रोटरडम पलादियो सरा 56 की रहने वाली माता श्री शिवदासी नेपाल भोला की मृत्यु हो गई है। और 55 तक 55 की आयु में फ्राइडाग 1 को देनहाग ईसिंग सरात 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद सिंह केवल मान सिंह की मृत्यु हो गई है। ये 9 परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार अर्थात मौत की खबर अमोर FM नीदरलैंड से हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइएगा।

जनहा कोनिंग सराज से समस्त परिवार मुन्ना सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार अप्रैल के 28 तारीख दिनसदख 28 अप्रैल दिन में 1:28 पर 66 बरस की आयु में समधी और समधन मदन और खैरदा मुन्ना सिंह की समधन रिशार्ड की माँ शरालीन की सास विनीता और नितेश की बहन की सास वीरेंदा की ननद की सास 6 की आजी देनहाक पीटर लांगदेश रात की रहने वाली श्रीमती मतेलदा कौरी चरण आप इन्हें जीवित में सेल्फी के नाम से जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है लेदन का LUMC में शव देखने की औषधि जा रही है रो सेंट्रम ओन से सोलक देनहाक तृप्तरात्रि होने देख पर फंदाक देंसदाक आज मंगलवार अभी रात्रि में शेफ तत् आख्तूर 7 to 8 तक और अर्थी आस्थान दोंदरदाख शेफ में शाम में 5:45 डेलफ्ट हॉफ लैंड नंबर 18 क्रेमेटोरियम इपन हॉफ की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी सभी परिवार हिति प्रेमी को सूचना देते हुए दूसरी परिवार की मृत्यु समाचार

रोटरडम होलंद से श्राद से समस्त परिवार बंधु समस्त परिवार कृपाल बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि कल सोमवार मई के 4 तारीख के सुबह में 3:30 बजे निघ्न शस्त्र 69 बरस की आयु में स्वर्गीय माता और पिता रामूनी नोहर बंधु और एतवारु बंधु की बेटी दो बेटी रेशमा कृपाल और संध्या बांधु और एक स्वर्गीय बेटी जयंती कृपाल की माँ 5 लड़के रेमोन देल रोसारियो सेल्फाना कृपाल स्वस्तिका बांधु नताशा कृपाल और वरुण मंगरूलाल की नानी दो नद्दमात रविनेश बिहारी और रंजीव छोटू की ननिया सास रोतनाम की रहने वाली सीता बांधु की मृत्यु हो गई है। शव देखने के अवसर आयुट फार सेंट्रम देला विल्सन रोटरडम विल्सन 5:35 पर आज मंगलवार 5 मई अभी रात्रि में 6-8 और अर्थी कल बुधवार मोर्ख वूंसडाग 6 मई दिन में 11:15 और 11:15 11:15 और 12:45 के दरमियान स्कीदम बुर्गमेस्टर फन हारनलान 1450 क्रेमाटोरियम बुकनहॉफ की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी। बारंद्रेक शहर से समस्त परिवार बांधु समस्त परिवार आराम खिलावन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि कल सोमवार मई के 4 तारीख की सुबह में 3:30 बजे निघ्न शस्त्र 69 बरस की आयु में भाई अनिल बंधु की बड़ी बहन भौजी औदरी बंधु राम खिलावन की ननद रोटरडम की रहने वाली सीता बंधु की मृत्यु हो गई है।

सूचना दे रहे हैं कि कल सोमवार मई के 4 तारीख की सुबह में 3:30 बजे नेखन शस्तक 69 बरस की आयु में, दो बहन और एक भाई आलमा जग्गी, श्याम जग्गी, रीता शिवकरण सिंह जग्गी, इन लोगों की बहन भौजी मिंच जग्गी बच्चू की ननद, छुटकू शिव शिवकरण सिंह की बड़की, शकीता जीवलाल रामदीन की मौसी और गियानो जीवलाल की नानी, रोतदम की रहने वाली सीता बांधू की मृत्यु हो गई है। शव देखने के अवसर आउटफार सेंट्रम देला विल संग रोतदम विल संग 5 तक पर फंदाक दिन 5 मई अभी रात्रि में 7 से लेकर 8 बजे तक सुफ तो 8 और अर्थी मोर्ख वूंस 6 मई दिन में 11:15 और 11:15 स्कीदम बुर्गमेस्टर फन हारन लान 1450 क्रेमाटोरियम बुकनहॉफ की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी। देन हाक ब्रांस रात 5:45 से समस्त परिवार हर पाओ। बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि कल सोमवार मई के 4 तारीख की सुबह में 3:30 बजे नेखन शस्तक 69 बरस की आयु में भौजी रीता हरपाल की ननद, स्वर्गीय भाई लोला बंधु की बहन, 5 लड़के नीता शरिता राजेंद्र सबिता और आशा बंधु की फुआ, 3 दामाद और 1 बहू की फुआ सास, 12 लड़कन के आजी और नानी, 5 लड़कन की पर आजी और पर नानी, स्वर्गीय माता और पिता रामोनी नोहर बांधु और एतवारू बांधु की बेटी, रोतदम के रहने वाली सीता बांधु की मृत्यु हो गई है। शव देखने के अवसर आउटफार सेंट्रम देला विल्सांग रोतदम विल्सांग 35 पर फंदाग दिनसदाग 5 मई सावन 7:00 to 8:00 अभी रात्रि में शव आप देख सकते हैं 7 से लेकर 8 बजे तक। अर्थी मोर्ख वूंसदाग कल बुधवार 6 मई दिन में 11:15 और 11:15 11:45 के दरमियान स्कीदम बुर्गमेस्टर फन हारनलान 1450 क्रेमाटोरियम बुकनहॉफ की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी। रोतदम कोकरसरा तीर्थ से समस्त परिवार बांधु, बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि कल सोमवार मई के 4 तारीख की सुबह में 3:30 बजे नेखन शस्तक 69 बरस की आयु में भाई रुदि बांधु की बहन भौजी बेया बांधु की ननद, 3 बेटी शान शकीता और तनीषा की फुआ, दमाद राकेश नगेसर की फुआ सास और वेदांश नगेसर की नानी, रोतदम की रहने वाली सीता बांधु की मृत्यु हो गई है। शव देखने के अवसर आउटफार सेंट्रम देला विल्सांग रोतदम विल्सांग 35 पर फंदाक दिनसदाग 5 मई अभी रात्रि में 6:00 to 8:00 7 से लेकर 8 बजे तक और अर्थी मोर्ख वूंसदाग कल बुधवार 6 मई दिन में 11:15 और 11:15 स्कीदम बुर्गमेस्टर फन हारनलान 1450 क्रेमाटोरियम बुकनहॉफ की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार बांधु, बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि कल सोमवार मई के 4 तारीख की सुबह में 3:30 बजे नेखन शस्तक 69 बरस की आयु में स्वर्गीय माता और पिता रामोनी नोहर बांधु और एतवारू बांधु की बेटी, 5 भाई और 1 बहन रुदि बिनवा सिल्फी सुरेश पौ अनिल और स्वर्गीय 3 भाई और 1 बहन लोला देया मुराली और तूना बांधु की बहन रोतदम की रहने वाली सीता बांधु की मृत्यु हो गई है। शव देखने के अवसर है आउटफार सेंट्रम देला विल्सांग रोतदम विल्सांग 35 पर आज मंगलवार फंदाग दिनसदाग सुमतेन फन 7:00 to 8:00 7 से लेकर 8 बजे तक और अर्थी कल बुधवार मोर्ख वूंसदाग 6 मई दिन में 11:15 to 11:15 के दरमियान स्कीदम बुर्गमेस्टर फन हारनलान 1450 क्रेमाटोरियम बुकनहॉफ की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी। सभी परिवार को सूचना देते हुए तीसरी परिवार की मृत्यु समाचार

बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि 7 अक्टूबर में शनिचर मई के 2 तारीख सवेरे में 8:35 पर श्री फ्रांसेस्क 67 बरस की आयु में धर्मपत्नी श्रीमती एफलिन सुखू का पति लड़के वादिका वंदना दीपक किरण और शनेत का पिता स्टीफन ईशा और विश का ससुर 10 लड़कों के नाना और राजा स्वर्गीय माता और पिता सुख नारायण मंगरू और सुखरानी रघु मंगरू का बेटा देनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू की मृत्यु हो गई है। जीवित में आप इन्हें राज के नाम से जानते थे। शव देखने के अवसर रॉ सेंट्रम ऊंस सौरक देनहाग तरफ श्राद्री होने देख पर आज सांड दोंदरदाक्ष में दिन में 11 से लेकर 12:30 बजे तक एल्फ तो थाल्फ एन और अर्थी बसलूत क्रिंग में अंतिम क्रिया की जाएगी। देनहाग शहर से समस्त परिवार कन्हाई बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए शनिवार 7 अक्टूबर सवेरे में 8:35 पर श्री फ्रांसेस्क 67 बरस की आयु में साढ़ू जॉन कन्हाई का साढ़ू भाई बड़की शीला कन्हाई का छोटकू आश्वन अंशला और वीरेश का मौसा 2 बहू और 1 दामाद का मौसा ससुर 5 लड़कन के नाना और राजा देनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू की मृत्यु हो गई है। राज के नाम से आप जानते थे। शव देखने की अवसर है रॉ सेंट्रम ऊंस सौरक देनहाग तरफ श्राद्री उन्देख पर दोंदरदाक्ष में दिन में 11 से लेकर 12:30 बजे तक और अर्थी अंतिम क्रिया बसलूत क्रिंग में की जाएगी। सभी परिवार हिति प्रेमी को सूचना है। नीदलाओं से समस्त परिवार बिसुन समस्त परिवार बाला दिन समस्त परिवार बुझावन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि 7 अक्टूबर के सवेरे में 8:35 पर श्री फ्रांसेस्क 67 बरस की आयु में एल्स बिसुन बुझावन गायत्री बालादीन बुझावन देनी और विनोद बुझावन का मामा रॉय बिसुन अशोक बालादीन और अलीशा का ममुआ ससुर 5 लड़कन का नाना स्वर्गीय माता और पिता सुख नारायण मंगरू और सुखरानी रघु मंगरू का बेटा स्वर्गीय 1 बहन और 2 भाई शीला मंगरू बुझावन जगन और क्रिश मंगरू का भाई स्वर्गीय बहनोई चंद्रपाल बुझावन का सार भौजी उर्मिला मंगरू का देवर सभी लड़कन के मामा और काका देनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू राज के नाम से आप जानते थे। इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने की अवसर रॉ सेंट्रम ऊंस सौरक देनहाग तरफ बरादरी हुंदतीख पर आन सांड दोंदरदाग शेफ में दिन में 11 से लेकर 12:30 बजे तक और अर्थी बसलूत क्रिंग में अंतिम क्रिया की जाएगी। सीडाम शहर से समस्त परिवार मुंशी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि 7 अक्टूबर के सवेरे में 8:35 पर श्री फ्रांसेस्क 67 बरस की आयु में साढ़ू भाई हरि मुंशी का साढ़ू भाई साली चंद्रा मुंशी का बहनोई 3 बेटी शशिनी मुंशी सुषमा रघुनाथ मुंशी रशिता मुंशी विशेषर इन लोगों का मौसा 3 दामाद रोड्रिगो कानिबानो युगेश रघुनाथ और आर्मांद विशेषर का मौसवा ससुर 4 लड़के रोहन और नोरा कानिबानो आरवीएन विशेषर और नयन रघुनाथ का नाना देनहाग का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू आप इन्हें राज के नाम से जानते थे। इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने के अवसर रॉ सेंट्रम ऊंस सौरक देनहाग तरफ श्राद्री होने तेख पर दोंदरदाक्ष में दिन में 11 से लेकर 12:30 बजे तक एल्फ तो थाल्फ एन अर्थी बसूत क्रिंग में अंतिम क्रिया की जाएगी। सभी परिवार हिति प्रेमी को सूचना देते हुए 4वीं परिवार की मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए।

सुरीनाम और नीदरलैंड से समस्त परिवार सुकार समस्त परिवार तेईतार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए बुधवार 29 अप्रैल वूंसदाख नेखन 20 अप्रैल के सुबह में 6 बजे नेखन सेफन तक 79 वर्ष की आयु में बड़की सोनी तेईतार और स्वर्गीय बड़कू जगदीश सुकार की छुटकी 3 बेटा रजेन श्याम और रामू की काकी 2 बहू की ककिया सास 3 पोता और 2 पोतिन की आजी रोतदम खै सिंह लान 802 के रहने वाली श्रीमती धर्मवती सुकार बिहारी मुन्ना के नाम से आप जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है रोतदम का फरप्लीक हैश सोन बिरुख में जो कि पहले से नाम देश में बलखदक बेवह की निवासी थी शव देखने की अवसर रोस एंट्रो मोनीता मेमोरियम रोतदम स्लिंग लंगहोर्समर होंदर्त पर फंडाख दिनसदाख 5 मई अभी रात्रि में 8:09 8 से लेकर 9 बजे तक और अर्थी मोर्ख वूंसदाख कल बुध 6 मई शाम में 3 बजे यहीं पर रोतदम लंगहोर्स होंदर्त क्रीमाटोरियम मोनीता मेमोरियम की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी घर पर शोक सभा नहीं है बैठक नहीं है सभी परिवार ही थी प्रेमी को सूचना देते हुए 5वीं परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए

देनहाग शहर से समस्त परिवार तुलसी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि दिनसदाग 5 मई आज मंगलवार मई के 5 तारीख की सुबह में 5:30 बजे सीफन तख्तक 87 बरस की आयु में स्वर्गीय माता और पिता अतवारू सारजू और परंदे सारजू विशेषर की बेटी, पति स्वामी प्रसाद तुलसी की धर्मपत्नी, 2 बेटा और 2 बेटी संजय, दैनी, कमला और मीना और स्वर्गीय बेटा ईश्वर प्रसाद कंधाई की माँ, दमाद ग्लेन और 2 बहू आशा और सुनीता और स्वर्गीय 1 दमाद और 1 बहू परशुराम मनोहर और चंद्र कुमारी सुभाग की सास, 12 लड़कन के आजी और नानी, 2 नद दमाद और 4 नद बहू के अजिया और ननिया सास, 12 लड़कन के पर आजी और पर नानी, देनहाग की रहने वाली माता श्री धनपालिया तुलसी सरजू, आप इन्हें इंदर के नाम से जानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है, जो कि पहले देनहाग मिलस्तो कलान 2005 तक और सुरीनाम में बेलखदाख आ की निवासी थी। शव देखने के अवसर रोस एंट्रम लोस देनहाग और देनहाग वेग 28 पर आस्थान डोंडरदाग 7 मई रात्रि में 6 तक 7:15 शाम में 6 से लेकर 7:15 बजे तक, अर्थी आस्थान फ्राइडाग 8 मई दिन में 2 और 3:30 के बीच तुसे 2:30-4 देनहाग ओकनबर्गस्ट्रैट 21 क्रेमाटोरियम ओकनबर्ग की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी। सभी परिवार को सूचना देते हुए 6वीं परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार मौत की खबर सुनने के लिए ध्यान दीजिए।

कनिष्ठ से समस्त परिवार ओरी समस्त परिवार कुंज विहारी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि कल सोमवार मई के 4 तारीख के रात्रि में 9:15 तक 59 वर्ष की आयु में माँ धर्मवती ओरी बांसी और स्वर्गीय पिता शिव ओरी का बेटा धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ओरी कुंज बिहारी का पति दो बेटा अविनाश कुमार और स्टीफन जयंत कुमार का पिता 5 भाई और 2 बहन सुरेश राजेश सरवन शर्मिला रणधीर मनोज और गायत्री ओरी का भाई 5 छोटकी का बड़कू 1 बहनोई का सार 19 लड़कन के दादा मामा आजा और नाना स्पैकनिस का रहने वाला श्रीमान श्याम कुमार ओरी सुनील के नाम से आप जानते थे इनकी मृत्यु हो गई है। शव देखने की अवसर रॉ सेंट्रम द ओमरिंग स्पैकनिस अप्रैल सवेख 3 पर वंदाग दिनसदाग 5 मई रात्रि में तो 7 uur और आनस्तांदे डोंदरदाग 7 मई वो भी शाम में 6 से लेकर 7 बजे तक अर्थी फ्राइडाग 8 मई के दिन में 1:30 और 3 uur यानी कि 1:30 और 3 के दरमियान यहीं पर स्पैकनिस अप्रैल सवेख 3 क्रीमाटोरियम द ओमरिंग की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी और जांच कार्य के लिए तार 06-45-46-11-92 06-45-46-11-92 सभी परिवार को सूचना देते हुए सातवीं परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए।

रोतदाम बेईफरवाद रैनोवन सिंगल से समस्त परिवार बासदेव सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि सोनदाखदरी मई के रात्रि में हलफ एलफ 10:30 बजे अख्त नीखन तक 98 वर्ष की आयु में स्वर्गीय पति शिव मोहन बासदेव सिंह की धर्मपत्नी, बेटा रोनी बासदेव सिंह की माँ, बहू मोहनमती बासदेव सिंह छोटे लाल की सास, दो पोता जयंत और सूरज बासदेव सिंह की आजी, नद बहू निशा बासदेव सिंह की अजिया सास, पर पोता और पर पोतीन अमाया और रियंश बासदेव सिंह का पर आजा। रोतरडम बेईफरवाद रैनोवन सिंगल की रहने वाली माता श्री मतिलदा लखपतिया बासदेव सिंह महावीर पांडे की मृत्यु हो गई है। शव देखने के अवसर रॉ सेंट्रम मोनिटा मेमोरियम रोतरडम स्लिंग लंगहोर्स होंदर पर मोर्ख वुंसदाग कल बुधवार 6 मई के रात्रि में हलफ अख्त हलफ नेख 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक और अर्थी आस्थान फ्राइडाग 8 मई शुक्रवार मई के 8 तारीख शाम में 4 बजे यहीं पर रोतरडम स्लिंग लंगहोर्स होंदर क्रेमाटोरियम मोनिटा मेमोरियम की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी। सभी परिवार हिती प्रेमी को सूचना देते हुए हमारे दुखी प्राणियों भाई बहनों, सातवीं परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए।

Rotterdam Vinkenbrinkstraat 229 Dosa Untise Samasta Parivar Atwaru Bahuduk Kesat Yesar Vajnik Suchana De Rehe Ki Mandag 27 April Bite Hue Somuar April Kesatai Starik Sham met 10 minuten voor 5 92 Bande Bevreskia Yume Swerge Mata or Pita Hardwar Bhola or Suruj Basi Somaru Ki Beti स्वर्गीय पति इश्री प्रसाद नेपाल की धर्मपत्नी स्वर्गीय बेटा गणेश अतवारू की मां बहू गीता अतवारू की सास अनवर और देविका अतवारू की आजी किशन घरबरन की अजिया सास और मायूर घरबरन की पर आजी रोटरडम पलादियोस रात 605 तक 56 की रहने वाली माता श्री शिवदासी नेपाल भोला की मृत्यु हो गई हैं कपेल अंदन एसल एसलन सिकन हाउस में अर्थी कल बुधवार मोरख वुंसदाग 6 मई दिन में 3:30 बजे रोटरडम साइड मार्टलिंगवेग 101 क्रेमेटोरियम देला आंदफान की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी सभी परिवार हेती प्रेमी को सूचना देते हुए आखिरी परिवार रिश्तेदार की मृत्यु समाचार मौत की खबर सुनने के लिए ध्यान दीजिए नीदरलैंड और सुरीनाम से समस्त परिवार केवल बान सिंह बहुत दुख के साथ यह सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्राइडेग 1 मई को 55 तक 55 वर्ष की आयु में नौपुआ चांद सोनी मीन हेल्दा शर्मा एल्स गायत्री आशा और कार्ला चार काका देव सुंदर सुरेश और राजन स्वर्गीय तीन काका रामवरण रामस्वरूप और रामधनी और तीन फूफा और पांच काकी का भतीजा बेटा सभी लड़कन का भाई काका दादा मामा नाना और आजा स्वर्गीय माता और पिता सूरजपाल झूरी केवलबान सिंह और शीला महताब सिंह का बेटा स्वर्गीय आजा और आजी शिवनारायण केवलबान सिंह और बंसराजी उमराव सिंह का पोता देनहाक ईसिंह सनात 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद सिंह केवलबान सिंह की मृत्यु हो गई है अर्थी मोरख वुंसदाग कल बुधवार मई की 6 तारीख शाम में 5:30 4:30 बजे हैंग नोट साइफ व्यूल नंबर 3 क्रीमाटोरियम हुक्सवाद की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी देनहाक ईसिंग सरात 135 से समस्त परिवार केवल मान सिंह समस्त परिवार रघुनाथ बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्राइडेग 1 मई को 55 तक 55 वर्ष की आयु में स्वर्गीय माता और पिता सूरजपाल केवलबान सिंह और शीला केवलबान सिंह महताब सिंह का बेटा धर्मपत्नी श्रीमती शारदा केवलबान सिंह रघुनाथ का पति रायश्री और भारत केवलबान सिंह का पिता दामाद अमरेश रामजस का ससुर दो लड़के अमायरा और शनाया रामजस का नाना पोता यशवीर केवलबान सिंह का आजा कमली सुनीता और जीत केवलबान सिंह का भाई मुकेश कालीदीन और सत्या लक्ष्मी नारायण सिंह का सार छोटकी फेरा का बड़कू चार लड़कन का मामा दो लड़कन का दादा देनहाक ईसिंग सनात 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद सिंह केवलबान सिंह की मृत्यु हो गई है अर्थी मूर्ख वुंसदाग कल बुधवार 6 मई की शाम में 5:30 बजे हैं नोट साइफ व्यूल नंबर 3 क्रेमेटोरियम हुक्सवार्थ की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी सभी परिवार को सूचना देते हुए एक आखिरी मृत्यु समाचार मौत की खबर अमोर एफएम नीदरलैंड से सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए सूरीनाम और नीदरलैंड से समस्त परिवार केवल बान सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार मई के 1 तारीख फ्राइडेग 1 मई को 55 तक 55 वर्ष की आयु में नौपुआ चांद सोनी मीन हेल्दा शर्मा एल्स गायत्री आशा और कार्ला चार काका देव सुंदर सुरेश और राजन और स्वर्गीय तीन काका रामवरण रामस्वरूप और रामधनी और तीन फूफा और पांच काकी का भतीजा बेटा सभी लड़कन का भाई काका दादा मामा नाना और राजा
स्वर्गीय माता और पिता सूरजपाल झूरी केवल बान सिंह और शीला महताब सिंह का बेटा, स्वर्गीय आजा और आजी शिव नारायण केवल बान सिंह और बंसराजी उमराव सिंह का पोता, देनहाक ई सिंह सनात 135 का रहने वाला श्रीमान गोविंद सिंह केवल बान सिंह की मृत्यु हो गई है। अर्थी मूर्ख वूंसदा कल बुधवार मई के 6 तारीख शाम में 4:30 बजे है इन नोट साइफ व्योल नंबर 3 क्रेमाटोरियम हुक्सवार्थ की भस्मांतर भूमि में दाह क्रिया की जाएगी। इष्ट मित्र परिवार जान पहचान वालों हिति प्रेमी को खबर दी जा रही है। लोग आते हैं चले जाते हैं, आना और जाना इस मृत्यु लोक की रीत है। इसी तरह से हमारे दुखी प्राण युवा भाई और बहनों अमोर FM नीदरलैंड और अमोर FM सूरीनाम से आप सुन रहे थे मृत्यु समाचार अर्थात मौत की खबर जो यहीं पर समाप्त होने पर आए हैं। हम अपने सुनने वालों की याद दिलाते हैं कि कल दिन में हॉलैंड के समय 12 बजे और सूरीनाम देश का समय सुबह में 7 बजे एक बार फिर से मृत्यु समाचार मौत की खबर पढ़ा जाएगा। सुनने वालों से निवेदन है, गुजारिश हम प्रार्थना करते हैं इन सभी खबरों को और आगे तक पहुंचा देने को। रेडियो अमोर इन सभी परिवार के दुख में शामिल है, आपके गम में शरीक हैं।

वैष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्।

आत्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं।

तूतक तूतक तूतक तूतिया आई लव यू, तू ही तो है मेरा माहिया। अमित कुमार एंड आशा भोंसले जी की आवाज़ें आप सुन रहे थे। लाइसराज लाइन इज नॉट स्टेज ओपन एंड अस द लीड इज afgelopen mag u inbellen 010-244-7250 per. Maar helaas geen telefoontjes. Ik ga u meenemen naar een volgend nummer uit de film Lahuki Dorang. Kishoda Jikiwaasme.

चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए किशोरा जी के पास। आप सुन रहे थे खालिद अहमद फिल्म लहू के दो रंग। अमर एफएम का ये प्रोग्राम है प्रिय सिंगलों द आफ्टर आउटसेंडिंग फ्रॉम द दिनसाह 5 मई। बढ़ चलते हैं हम आपको लेकर फिल्म त्रिशूल के तरफ। मोहब्बत बड़ी काम की चीज़ है।

0: बिल्कुल सही, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। नाइटिंगेल लता किशोरा और येसुदास जी की आवाज़ आप सुन रहे थे, और इस सुंदर गीत को हमने निकाले थे फिल्म त्रिशूल से। लेकर चलते हैं हम आपको इस बार फिल्म जमाने को दिखाना है की तरफ, और डे बर्मन जी की आवाज़ में तिस नंबर तिस या लाइफ टू सेल्फ मार गजोंग दौर आर डे बर्मन जी। दिल्ली ना खेल है दिलदार का।
1: लैला मजनू शीरी फरहा ही रांझा

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

दिल्ली ना खेल है दिलदार का। आरडे बर्मन जी आपको सुना रहे थे जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम। लसराज क्वार्ट फोर नेह हो चला है और अगला गीत हमने निकाले हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी से।

0: तेरा और जां भी तेरी, उषा उत्तप एंड बपी लहरी जी आपको सुना रहे थे। लुसराज एक खै महीने में वेदरों नर फिल्म दीवार आशा जी है और साथ दे रही हैं किशोरदा जी।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

सिकंदर का सिकंदर दोस्तों फिल्म के नाम है और ये गाना जो आप सुने हैं आशा भोसले महेंद्र कपूर और साथ में लता दीदी के आवाज़ में दोस्तों। चलिए हम गाना जो इस बार पेश करने के लिए जा रहे हैं प्लेयर पर जो मैंने रखे है इस औक अनहेल मोय नंबर आप सभी लोगों के लिए दोस्तों हम सब मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग महेंद्र कपूर और साथ में आशा भोसले।

और ये गाना दोस्तों महेंद्र कपूर और आशा जी के जरिए सुन रहे थे प्रोग्राम में इतिसर अमोर एफएम दोस्तों। और चलिए हम एक दो गाना और पेश करेंगे, उसके बाद नलिनी प्रोग्राम ऑफर लेगा। चलिए एक दो गाना और दोस्तों, और सॉन्ग जो हम इस बार पेश करने के लिए जा रहे हैं वो साथी रे गाना के बोल है आशा दीदी और फिल्म जो है मुकद्दर का सिकंदर।

जी हाँ दोस्तों, ये गाना आप सुने हैं प्रोग्राम में। चलिए एक आखिरी सॉन्ग दोस्तों, एक आखिरी सॉन्ग हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। और गाना जो है दोस्तों, आशा भोसले, किशोर कुमार एंड उषा, वैसे तो और लोग हैं इस गाना में जो शामिल हैं। चलिए मिलके दोस्तों ये गाना हम सब सुनते हैं।

सभी का बदन जलने लगा। आशा जी की आवाज आप सुन रहे थे। गीत को हमने निकाले थे फिल्म अब्दुल्ला से। दोस्तों लेकर चलते हैं हम आपको इस बार फिल्म जूली की तरफ। एक सुंदर डुएट सॉन्ग है नाइटिंगेल लता जी और साथ दे रही है किशोर कुमार जी।

मैं प्यार तुमसे ही करती हूँ तुम गवाही दो। कुमार सानू जी की आवाज आप सुन रहे थे। लेकिन चलते हैं हम आपको इस बार अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा जी की तरफ।

लिखा है मीनारों पे लिखा है तेरा नाम। अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा जी की आवाज़ें आप सुन रहे थे और गीत को हमने निकाले थे फिल्म जुनून से। लेकर चलते हैं हम

हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता और मेरे प्यार का हिसाब भी नहीं मिल सकता। अलका याग्निक और कुमार सानू जी आपको सुना रहे थे। बढ़ चलते हैं हम आपको लेकर कुमार सानू और इस बार साथ दे रही है अनुराधा पौडवाल जी।

लागे ना। सुंदर रोमांटिक सॉन्ग प्रेस विनवलो आपकी सेवा में पेश हुआ अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू जी की आवाज में।

ये प्यार ही तो है। कुमार सानू और सुनंदा जी की आवाज़ ही आप सुन रहे थे द पावर ऑफ लव अमोर एफएम लाइव सराश। और बढ़ चलते हैं हम आपको लेकर इस सुंदर गीत की तरफ।

मिलते मिलते हसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा जी की आवाज ही आप सुन रहे थे। लेकिन चलते हैं हम आपको इस बार अनुराधा पौडवाल जी की तरफ।

खूबसूरत से खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे कि ए दिल है मुश्किल। मैं विनेश गुरबीन और आपको स्वागत करता हूँ। दिस इज अमोर एफएम, द पावर ऑफ लव। Het is vandaag woensdagavond en ik heb natuurlijk wat mooie nummers klaarstaan.

का खूबसूरत गीत ये था। और अगला गीत जो मैंने आपके लिए तैयार रखा है, दिस इज फ्रॉम फिल्म कमांडो 2 एंड इट इज गिजोंग डोर अरमान मलिक की तेरे दिल में। चलो मिलकर सुनते हैं।

अच्छे गीत है। रिचा शर्मा ने गाया है फ्रॉम द फिल्म खाकी। खान नेक्स्ट सॉन्ग है सुन निगम कुछ कश्मे कस्मे है।

कुछ कस्में हैं जवान, कुछ वादे हैं हसीन। सुनो निगम एन अलका जी आपको सुना रहे थे Amor FM, the power of love is dit. We gaan direct weer verder naar de next song. En dit is de song. Prachtige song. Meri saas ho me basa hai, tera hi ek naam, teri yaad hum safar, subha shaam. Teri yaad hum safar, subha shaam.

मुख्तसर मुलाकात है, क्या गीत है ना अमोर एफएम, ये है, मैं हूँ विनेश गुरबीन और आपको स्वागत करता हूँ वो सखाफत इस जेत बखान नार सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूँ।

सबरिश्ते नाते हंस के तोड़ दू, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दू। मखाना फिल्म चमेली सजना वे सजना।